0: मच्छर, एक मच्छर साल आदमी को हिजड़ा बना देता है।
1: गुलामी करने की आदत पड़ी है, तो जिए मालूम नहीं तो मरे मालूम नहीं।
2: मेडल जो नेशनल अवार्ड है उसकी फैक्ट्री बन गई है, तीन तो हो गए, अभी चौथी हो जाएगी, फिर पांचवी हो जाएगी, और क्या, तीन तो हो गए ना तेरे, तो फिर क्या,
3: तीन तो आपके भी हो गए, चौथा आने वाला है
2: अभी। हमारा जर्नी बहुत है यार, लेकिन यार मुझे ये ज्यादा साल है फिल्म इंडस्ट्री में। कितने साल हो गए तुझे?
4: 50 साल
2: हो गए भाई, कैसी हैं आप? हमको झुक के बात करनी चाहिए, हमारे सीनियर हैं भाई अपनी इंडस्ट्री में। लेकिन सच कहता हूँ, वहाँ हम एक ऐसे वो पल ढूंढते रहते थे कि थोड़े हंसी थोड़े मजाक के, होता ही नहीं था यार, इतना हम ऐसे था ये। और इसका ये बंदा यार, इसके साथ दोबारा काम करे ना करे, मैं सोचना चाहिए।
5: थैंक यू वेरी मच।
6: That was an interaction that we had with the team of the vaccine war in 2023. This was another side of Nana Patekar not many saw in public. He could laugh, he could make you laugh. And not just in films, but in real life. He was so full of anecdotes and stories. Once he opened up, he was so pure, so clean, that, in his heart, that there would be so many stories that would just pour out. One of the most iconic actors of the film industry, Nana Patekar. He sadly passed away at the age of 75 in Goa this morning. He suffered a massive cardiac arrest at his residence very early this morning. Nana Patekar

0: राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपीज पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज मोबाइल फोन पर है, सरकारी मदद अब सीधे बेनिफिशियरीज के खाते में जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करीब 50 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मुझे बताइए, जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो गई है वो क्या मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो कितने चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करीब 50 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मुझे बताइए, जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो गई है वो क्या मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो कितने चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है।
1: ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा?
2: आलू ले लो, कांदे ले लो।
3: इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है।
4: कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल
5: अपना तो उसूल है, पहले लात फिर बात, उसके बाद मुलाकात।
6: Okay, let's on this point therefore go to someone who knew Nana Patekar. In fact, only recently did a series of wonderful photographs of Nana Patekar. Atul Kasbekar, celebrity photographer and film.

राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपीज पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।

0: बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
1: एंजॉय करे 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
2: So many payment apps, but which one is safe?
3: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
4: It's the Mahi way.

आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज मोबाइल फोन पर है, सरकारी मदद अब सीधे बेनिफिशियरीज के खाते में जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करीब 50 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मुझे बताइए, जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो गई है वो क्या मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो कितने चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा।

राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपीज पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।

0: तीसरा दिन और इंडिया गठबंधन का तीसरा प्रदर्शन दिल्ली में होने की संभावनाएं और प्रबल होती जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद हैं। सर, थर्ड डे, थर्ड प्रोटेस्ट, क्या है आज लंच का मेन्यू, क्या है और उसके बाद क्या प्रोग्राम है?
1: कल साउथ इंडियन खाया था, आज नॉर्थ इंडियन खाएंगे सब बैठ करके। अब खाएंगे पिएंगे तभी तो लड़ेंगे, अब चलेंगे लड़ने के लिए।
0: लेकिन ये कैसे हो रहा है सर कि हर दिन आप लोगों का लोकेशन जंतर मंतर के आसपास का ही हो रहा है लंच का?
1: अब ये तो देखिए, अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं, अब एकदम कहीं हो नहीं पा रहा तो एकदम रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं सब लोग जाकर, एक साथ इकट्ठा होकर के बात करते हैं फिर चलते हैं।
0: आप लोग लेकिन इकट्ठा होते हैं सर, दिल्ली पुलिस फिर डिटेन करने के लिए आती है और इसके बाद आरोप लगते हैं कि आप लोग खुद भी बल प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो आया, उसमें बीजेपी कह रही है कि स्मैश पेट्रियार्की का नारा देते हैं और महिला पुलिस कर्मी को खुद हाथ लगा रहे हैं राहुल गांधी। दूसरे वीडियो में प्रियंका गांधी वाड्रा कोहनी मारते हुए दिखाई दे रही हैं, क्या हो रहा है सर?
1: देखा आपने उस वीडियो को, दूसरे एंगल से भी देखिए ना, नीचे एक महिला कार्यकर्ता के साथ किस तरह से बदसलूकी की जा रही है। अपने साथियों को बचाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी को इस चीज को भी दिखाइए ना, एक ही एंगल से दिखा रहे हो, दूसरा एंगल भी दिखाइए कि नीचे किस तरीके से उसे मार रहे हैं, हमारी महिला कार्यकर्ता को, उसको बचा रहे हैं राहुल गांधी और क्या कर रहे हैं उसके अंदर, अपने लोगों को ना बचाएं।
0: लेकिन आप लोगों पर अब ये आरोप लग रहा है कि विपक्षी नेता, विपक्षी कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग कर रहे हैं।
1: हमारे ऊपर बल प्रयोग हो रहा है, कल मुझे भी धक्का मुक्की हुई बहुत बुरी तरह से, हमारे ऊपर बल प्रयोग हो रहा है। राहुल जी बल नहीं प्रयोग कर रहे हैं, राहुल जी तो अपनी कार्यकर्ता को नीचे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे जूतों के अंदर रगड़ने की कोशिश की जा रही थी।
0: FIR होने की बात हो रही है सर, एक और FIR दिल्ली पुलिस
1: अब FIR ये कर लें चाहे जितनी है, इनकी FIR से हम पे फर्क नहीं पड़ता है, ये तो FIR पर FIR करे जा रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क हम पर नहीं पड़ेगा।
0: आखिरी सवाल सर, कल समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं दिखे थे आपके इंडिया गठबंधन वाले लंच में, आज क्या समाजवादी पार्टी दूरी बनाए रखेगी या शामिल होने जा रही?
1: नहीं, कोई दूरी नहीं है, अखिलेश जी का बयान आ गया था, कोई दूरी नहीं है, हम लोग साथ हैं, ये तो लंच डिनर लगातार चलते रहेंगे, राहुल जी, अखिलेश जी ने बोल दिया था, तो हमारी कोई दूरी नहीं है, हम लोग साथ हैं।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी।
5: यू नो डिजाइन्स कितने लाख से भी ज्यादा डोर
6: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड, खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
7: एक परिवार अटूट भरोसा।
8: So many payment apps, but which one is safe?
9: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
10: It's the Mahi way.
11: आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं उनको?
12: A political storm over Gyanesh Kumar's resignation.
13: All MPs of India Bloc are of just one view that Gyanesh Kumar must step down.
12: India Today tracks the opposition's growing demand from the ground.
14: Rahul Gandhi has gotten off the bus.
13: All senior leaders are yet to be detained.
14: And there is high drama unfolding.
15: This is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.

0: Welcome back, viewers. You're watching Fast Up on India Today. And at the very top of this segment, we're taking you to a poll-bound state. Yes, this is Punjab that we're speaking of. They're gearing up for elections in 2027. And what we're now learning is with regards to BJP and Akali Dal sparking alliance buzz at this given point. And it's only gaining more pace because the BJP-Akali alliance talks have started intensifying ahead of the Punjab Assembly polls. What the BJP survey has come out to project is over 80 seats for the BJP-Akali alliance, as per sources. BJP seeks at least 45 seats in the 117-member Punjab Assembly. In the seat-sharing, constituencies and chief minister face emerging as key hurdles. Three major aspects that still need to be, the finer points of which need to be creased out. These are big questions that are mounting amongst the two sides, between the two sides, that is, but BJP eyes bigger shares at the same time seeking to move beyond junior partner status. Sukhbir Badal may be Akali Dal's chief minister face. BJP leaders have reservation on the same. This is as per sources right now. So both alliance talks intensify and at the same time there are mounting questions with regards to how the seat sharing formula shall take place. Himanshu Mishra joining me on the broadcast with more details. Himanshu, a very good morning to you. Sabse pehle, पहली बात तो ये जो बीजेपी अकाली दल की अलायंस है अगर हम उसको देखें ये जो सर्वे की बात हो रही है बीजेपी के तरफ से और जिसमें उनको पता चल रहा है कि ये अलायंस शायद कैन परफॉर्म वेल इन द पंजाब इलेक्शंस उसके बारे में पब्लिक सेंटिमेंट के बारे में थोड़ा बताइए और ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है जिसको लेके बीजेपी अभी भी थोड़ा सा हिचकिचा रही है उसको लेकर भी जानकारी दीजिए उनके तरफ से चीफ मिनिस्टरियल फेस कौन होना चाहिए उनका क्या आइडिया है इसके ऊपर
1: देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उनमें 117 सीटों पर अगर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो 80 से ज्यादा सीटें जो है वो जो है अलाइंस जीत सकता है भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 1995 से जो उनका अलायंस था 2019 के लोकसभा चुनाव तक तब तक भारतीय जनता पार्टी जो है छोटे भाई की भूमिका में रहा है तीन लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ता रहा और उसके साथ साथ जो है वो 23 विधानसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है वो हमेशा अच्छा रहा है। 2007 और 12 के जो विधानसभा चुनाव रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। 2007 में 23 में से 19 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, बाद में 23 में से 13 सीटें जीती थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है और पिछले चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो बड़ा है। वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो 15% के करीब जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में गए। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर ये भी है कि इस बार जो उनकी भूमिका भले ही छोटे भाई की में रहे लेकिन नंबर ऑफ सीट जो है वो बढ़नी चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 23 विधानसभा सीटों से बढ़कर जो है वो 45 विधानसभा सीटें जो है 117 सीटों में से उनको मिले। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हमेशा अर्बन बेल्ट के अंदर जो है चुनाव लड़ती रही है और दूसरी तरफ अकाली दल जो है वो रूरल बेल्ट में चुनाव लड़ता था तो भारतीय जनता पार्टी की इस बार कोशिश है कि वो रूरल बेल्ट में भी चुनाव लड़े। यानी एनएच के लेफ्ट और राइट जो भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक था उससे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है कुछ रूरल बेल्ट में भी गया। तो वहां से भारतीय जनता पार्टी 45 सीट्स की डिमांड करती है और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके फेस को लेकर जो है थोड़ी सी इमेज कॉन्शियस है भारतीय जनता पार्टी और उनकी जगह अकाली दल की तरफ से चाहे वो हर्षदत्त कौर बादल हो या अन्य किसी लीडर को अगर फेस बनाया जाए तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि उप मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी का रहे क्योंकि 2007 से 12 जो है भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री रहे थे टिक्सन सूद और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो है वो अलायंस में रहे 12 से 17 में।
0: जी जी हिमांशु, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, सो दिस इज वेयर द नंबर गेम बिटवीन द बीजेपी एंड द अकाली एज द टॉक्स कंटिन्यू स्टैंड्स। स्ट्रैटेजीज ऑफ कोर्स बीइंग प्लान्ड आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वील कीप एन अपडेट ऑन कीप अ लुक एट ऑल ऑफ दोज डिटेल्स एंड कीप अपडेटिंग यू विद द सेम। बट राइट नाउ देयर इज मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, लेट्स टेक अ लुक। Circling back to a big story, it's the US crackdown on 8 of the major firms, IT firms that is, over the visa row. Going back to it, it's TCS, the IT giant, that's come out to respond to this entirety of the matter. Earlier, we were taking you through the Microsoft response that's come in the statement. Now, TCS has to say that this particular crackdown does not affect us because the perm suspension will not affect our workforce, neither will it impact on client engagements, because our perm applications were in the first place to begin with in single digits. The US perm suspension will not affect the workforce strategy. There's a statement that's now coming from the Indian IT tech giant, that is TCS, saying the US suspension of the perm, that is the entire permanent employee residency program, the labor certification program for the green card, will have no impact on its workforce strategy or client engagements, as its perm applications were already in single digits over not just this year, but the past 2 years at this point. So which is why they have to say that their client engagements will not be affected. So somewhere we see all of these tech companies have now come out to start saying that their perm applications had already started lowering. They didn't have as many applications in the first place, and that they had begun going back to the programs wherein we have American employees being prioritized first by the Trump government itself. So at this given point, there's a lot of conversation around the entirety. There are these tech companies now starting to respond to the entire situation, and they seem to be putting up at least a statement or a front of not being too bothered or not being too affected and impacted by this entire move. But what is this move indeed that we are speaking of? Let's take you a little more into the details and context of it. It's a major setback for the Indian IT companies in the United States. The Trump administration has suspended the access of several major IT firms to the PERM program, which is a key step in the employment-based green card process. The companies named include, there are 8 major companies. Out of them include 4 Indian IT companies, Infosys, Tata, Wipro, HCL Tech, French firm Capgemini, as well as the U.S. tech giants Microsoft, Adobe and Cognizant. U.S. Vice President J.D. Vance has said that the companies are under scrutiny over alleged visa fraud, accusing them of replacing American workers with foreign labor. Vance has also said the administration wants American workers prioritized, calling on Congress to reform the H-1B visa system. U.S. perm program is the labor certification process through which employers generally sponsor foreign workers for permanent U.S. residency. Now, the suspension means affected companies cannot make fresh perm filings while the action remains in place, potentially delaying the green card pathways for thousands of foreign professionals, including Indians. And it also freezes the pending applications at this point of time. So it's a two-way crackdown almost of sorts that we see. Let's take a look at the reactions first before we proceed with the discussion.
2: Thanks to an ongoing investigation, we have decided to suspend the PERM program for Microsoft, which means they will no longer be able to apply they'll no longer be able to take those H-1Bs and apply for permanent resident status within the

0: राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपी पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज मोबाइल फोन पर है, सरकारी मदद अब सीधे बेनिफिशियरीज के खाते में जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करीब 50 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मुझे बताइए, जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो गई है, वो क्या मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो कितने चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा।

राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपी पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।

0: एक्सिस बैंक दिल से ओपन
1: म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: गिरनार एक चाय हो जाए।
0: AU स्मॉल फाइनेंस बैंक।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: आप देख रहे क्या कर रहे हैं उनको?
4: A political storm over Gyanesh Kumar's resignation.
5: All MPs of India Bloc are of just one view that Gyanesh Kumar must step down.
4: India Today tracks the opposition's growing demand from the ground.
6: Rahul Gandhi has gotten off the bus.
7: All senior leaders are yet to be detained.
6: And there is high drama unfolding.
8: This is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: अपना ही उन पर ध्यान दें। किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं कि इस तरह की अननेसेसरी भीड़ में या ऐसे कोई प्रोटेस्ट में किसी में हिस्सा न लें, क्योंकि इसमें प्रशासन अपना काम कर रहा है। उसमें अननेसेसरी किसी कारणवश हमारे बच्चे को या हमें कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। आप लोगों का धन्यवाद।
1: जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली के अंतर्गत, इसमें जो भी ऑथराइज्ड मीडिया पर्सनल हैं वो सारे इवेंट को कवर कर सकते हैं, उसमें हमें दिल्ली पुलिस को कोई इशू नहीं है। बट देर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो कि सेल्फ प्रोक्लेम जर्नलिस्ट हैं।
2: बताओ ना, कुछ तो जवाब दो, समझ आए हमें, हमारा माथा खोल रहा है।
1: पुलिस वालों को इंसाइट करते हैं, उनसे कोई रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं, एंड देर इज अ क्लियर विजिबिलिटी जहां वो पुलिस के काम को ऑब्स्ट्रक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। जो ऑथराइज मीडिया पर्सनल है वो अपना जो ड्यूटी वर्क है वो कैरी ऑन करें, बट ये जो सेल्फ प्रोक्लेम जर्नलिस्ट हैं ये हमारे काम को ऑब्स्ट्रक्ट ना करें।
3: कुछ प्रोटेस्टर हैं, एक दिन वो एज ए जर्नलिस्ट बन के आते हैं और
4: इफ यू डिटेन मी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ जर्नलिस्ट, यस आई हैव अ कार्ड।
3: दूसरे दिन एज ए वो प्रोटेस्टर आते हैं, डिटेन होके जाते हैं,
4: वापस आऊंगा, मुझे याद करना सभी।
3: हम ये बार बार उनको अपील भी करते रहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा दूरी बना के रखें प्रोटेस्टर से, आप दूर से कवर करें, मगर फिर भी वो बीच बीच में आते हैं और हमारे कार्य में बाधा डालते हैं। वो
1: प्रोटेस्ट में ये भी नोटिस किया है कि काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है।
5: भाई लेडी पुलिस को ये कह रहा है कि के सामने कपड़े उतार देगी, ये कह रहा है भाई ये बंदा।
1: फीमेल पुलिस पर्सनल के खिलाफ भी इनडिसेंट लैंग्वेज और एक्शन का यूज हो रहा है। ये पुलिस को इंस्टिगेट करने के लिए, उनकी इमेज टार्निश करने के लिए किया जा रहा है, पर दिल्ली पुलिस फिर भी प्रोफेशनली अपने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रही है ग्राउंड पे, और हम लोग प्रोफेशनली सिटीजन की सेफ्टी के लिए आगे भी काम करते रहे। जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली के अंतर्गत, इसमें जो भी ऑथराइज मीडिया पर्सनल हैं वो सारे इवेंट को कवर कर सकते हैं, उसमें हमें दिल्ली पुलिस को कोई इशू नहीं है। बट देर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो कि सेल्फ प्रोक्लेम जर्नलिस्ट हैं।
6: My colleague Arvind Oja tracking all the latest on this and what do such videos mean. Arvind, jahan tak meri knowledge hai, aise videos pehle kabhi nahi aaye hain Delhi Police ki taraf se, to kis tarah se in videos ko dekha ja raha hai, kyun ye videos nikale gaye hain, kis tarah ki strategy aur approach hai Delhi Police ki, kyunki criticism to ye aayega ki kya ye logo ko democratic protest mein part lene se mana kar rahi hai police.
7: देखिए, 2 अक्टूबर से अब तक लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है और पहले भी दिल्ली में प्रोटेस्ट चलते रहे हैं, और आपको याद होगा 20 जुलाई को जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था उसमें दिल्ली पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया कि कुछ जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, वो भीड़ को, खासतौर से पुलिस वालों को उकसाते हैं। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया है कि जो दिल्ली पुलिस का प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक कोई भी मीडिया बाइट या रिएक्शन वो डीसीपी रैंक का ऑफिसर ही देता है, कभी लोअर स्टाफ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर ये नहीं देता। लेकिन हाल फिलहाल के प्रोटेस्ट में देखा गया है कि कुछ लोग मोबाइल लेकर पहुंचते हैं, वो हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के मुंह में लगाते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनको उकसाते हैं, और कई वीडियो पुलिस को ऐसे मिले हैं जिसमें गाली गलौज की जा रही है, उनके सामने अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है कि उनको उकसाने की कोशिश की जाती है, और जैसे ही वो पुलिस कांस्टेबल या लोअर स्टाफ रिएक्ट करता है उसको कैमरे में कैद किया जाता है और वायरल किया जाता है। तो इस तरह की चीजों पर पाबंदी लगाने की कोशिश है दिल्ली पुलिस की। साथ ही साथ कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनके साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया था। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी मार्च कर रहे थे तो 2 पुलिसकर्मियों को लात मारा गया था और उनको पीटा गया था, उनकी वर्दी फाड़ दी गई थी, और इंडिया टुडे ने उन दोनों पुलिसकर्मियों से कल बातचीत की है। उसके अलावा एक वुमन पुलिस पर्सनल है, उसके साथ मारपीट की गई। तो इस तरह के मल्टीपल कंप्लेन दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों को जो लोअर स्टाफ है वो कर रहा है कि किस तरह से उनको उकसाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, जो वुमेन पुलिस पर्सनल है उनके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने इन्हीं चीजों को लेकर मल्टीपल जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उन्हीं को वीडियो बनाकर अपने एक्स हैंडल पर डाला है और अपील की है कि अगर किसी को प्रोटेस्ट करना है तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें। और साथ ही साथ नई दिल्ली इलाके में 163 DNS लागू है तो ऐसे में भीड़ वहां इकट्ठा हो भी नहीं सकती। तो दिल्ली पुलिस ने दरअसल जो पिछले दिनों जो प्रोटेस्ट हुआ था और जो आरोप लगे थे ऐसा लगता है उससे थोड़ा सबक लिया है और अपनी तरफ से फ्रंट फुट पर एक तरीके से कहें दिल्ली पुलिस फिलहाल है। और 10 अक्टूबर के पहले ये बताना चाह रही है कि किस तरह से पुलिस वालों पर लगातार अटैक हो रहा है।
6: वेरी इंटरेस्टिंग अरविंद ओझा टेलिंग अस अबाउट दिस न्यू स्ट्रेटजी टू रीच आउट and these are videos that are being released officially by the Delhi police. But one line also that Arvind Ojha is telling us about, where they are saying one day they come as a journalist, the next day they are part of the protest and then they get detained, the third day they are back as a journalist. So there has to be a certain role and it has to be either way decided. Another video released and that appears to have been recorded on a mobile phone about a cop saying try to avoid the protest. A very interesting strategy. We'll see how the opposition responds to it. Arvind, thank you very much for now. Let me now tell you about the updates coming in from Tamil Nadu's bi-poll as well. That's on AIADMK and TVK are neck and neck in Dharapuram. The TVK party, which is the ruling party in the state right now, is surging past AIADMK in round 5. Satyabhama leading from Dharapuram in the state of Tamil Nadu. AIADMK's Bhanumati is trailing right now. TVK continues to lead from Madhuran Takam also. Interestingly, amid all of this, DMK is second in race in Madhuran Takam. So that is what we are looking at. Interesting battle. Remember, by-elections also are reflective of how much trust is being shown in the ruling party, the TVK, in the AIADMK, and the former ruling party, the DMK. Anaga Keshav joining me for the latest on that. Anaga, tell me about these two constituencies. How crucial are they? What does it mean that while it is neck and neck, TVK continues to lead in both?
8: That's right. In fact, particularly in Dharapuram, it was quite a close call. In one round, we saw TVK winning, and in the other round that we saw, AIADMK was leading. So it's quite neck-to-neck. In fact, I have some updated figures as well from Dharapuram that I'm reading from the Election Commission website. TVK is right now leading by 1,394 votes. We're right now in round number 6, where TVK is leading by 1,394. The second place is AIADMK's Bhanumati, and then is DMK. The candidate is Suganya. So therefore, it's clear, at least in Dharapuram, the vote margin has crossed 1,300. That's the difference in Dharapuram between the TVK and the AIADMK. There are totally 23 rounds, of course, and we're only in round number 6. So all of these that we're talking about are only early trends. We need to wait until at least 12:30 to really sort of understand which way are the winds swaying. Is it AIADMK? Is it TVK? Or will there be a googly and DMK will come up as the winner? So it's quite interesting how the bipoles in Tamil Nadu have turned out to be. But, you know, but let's not forget the reason why this bipole is happening in the first place. The TVK right now has the strength of 107 MLAs in the assembly, which means they are still running a minority government with the support of external parties, the ally parties, like the likes of VCK, IUML, and even the external support of left parties that have not decided to join the cabinet. So therefore, in order for the TVK to have a smooth sailing majority government, they need to stand alone on their own foot without the support of their ally parties. And that's why this by-election is happening right now in two constituencies, Madhuran Takam and in Dharapuram. So even if the TVK ends up losing, there's really not much to lose for them because the government is still going to be stable. But if they do end up winning, then it's going to be a single majority government. The TVK will be able to breeze through the next 5 years without any dependency on the other alliance parties, on the other alliance partners for the next 5 years on their own. And that's why this election is so much more important for TVK.
6: Keep tracking the bipoles there in Tamil Nadu, Anaga. And eventually, if the TVK wins this, it will be reflective that Vijay is still going strong. All eyes clearly are on the bipole results. The counting is also underway right now of the designated counting centres. This is Madhuran Takam and Dharapuram. Postal ballots, as always, as protocol is, are being counted first, followed by the electronic voting machines. In Dharapuram, there is a closed contest, we are told, between AIDMK's Bhanumathi and TVK's Satyabhama. In Madhuran Takam, TVK is having a comfortable lead against both AIDMK and the Dravidam Netrakaragam. Independent candidate from Madhuran Takam is alleging, though, that machines were malfunctioning at one counting centre. But he was removed from that counting centre later. For TVK, the contest is party's first major electoral test after coming to power, putting the organisational strength and voter appeal again under the spotlight. For the DMK, this is as much an existential crisis, but also an opportunity for MK Stalin to stage a comeback, reclaim a lost ground. What about the AIDMK? It's also facing a crucial test. Electoral strength under Edappadi K. Palaniswamy. The turnout figures also point to a notable decline compared with previous assembly polls. Madhuran Takam recorded 86.26% voter turnout in by-elections. Dharapuram recorded 80.30%, compared with, though, 89.89% in the assembly polls. Remember, these were defections also that recently happened that eventually triggered the by-elections in both seats. Both Margatha and P. Satyabhama, who had won two seats on AIDMK in the 2026 assembly elections, resigned and joined the TVK that had won the assembly elections. Meanwhile, let me tell you about what the BJP's landslide is looking like in Nandigram and Rajinagar in Bengal. BJP is taking a comfortable lead in Rajinagar and Nandigram, especially again, Nandigram, remember, one of the most significant constituencies when it comes to Bengal. And why is this important? Remember, the mother of the slain PA of Suvendu Adhikari, she had contested the elections and is leading. Hansirani Rath is leading from Nandigram seat. BJP is racing ahead in Rajinagar also. And again, if both these seats go to the Bharatiya Janata Party, it will be reflective of one, the situation turning, the tide turning in Bengal. Once a bastion of the left wing, then of the Trinamool Congress, now showing their trust in the Saffron Party. All right, the Sindoor Khela already looks like is happening. Indrajit Kundu is on the ground. Indrajit, over to you.
9: आए थे वो जीते थे 2021 में ममता बनर्जी को उन्होंने हराया था. इस बार उन्होंने ममता बनर्जी को अपने ही भवानीपुर सीट में कोलकाता में हराया है, इसलिए वो भवानीपुर का सीट उन्होंने रिटेन किया और नंदीग्राम उन्होंने छोड़ दिया. तब जाके यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ है और इस बाई इलेक्शन में बीजेपी को बहुत बड़ी लीड मिल चुकी है, बढ़त मिल चुकी है और इसलिए बीजेपी के जो समर्थक है उनमें काफी उत्साह है क्योंकि वो जानते हैं कि वो जीतने वाले, यही उनका दावा है.
6: That is Indrajit Kundu telling us basically about a certain, the significance of the seat of Nandigram. Why is it important as much for whether it is the TMC for Mamata Banerjee and how the seat had been represented earlier by the TMC and then how it could now be a significant seat that could become a bastion for the Bharatiya Janata Party. Remember, this is one state that has seen the wipeout of one era after another. And for the longest time, however, that era has sustained, whether it is of the left wing, then whether it is of Mamata Banerjee's Trinamool Congress. If there is a change that we have seen in Bengal and that's happening with the BJP, does it become a saffron era for the state of Bengal? Nandigram by-elections have ended, so all eyes will be on the key bipoll results as well. BJP for now, in the latest, is leading in both seats in Bengal, Nandigram and Rajinagar. Three rounds of counting have happened in which BJP's candidate is leading with over 28,000 votes, 30,000 approximately. And this is, of course, remember, the postal ballots that are open first. Nandigram will be a massive test. It's BJP's Hasi Rani Rath. If she retains the seat against Congress candidate Milan Pradhan, which is also backed by Mamata Banerjee's camp, it will be a huge victory. Polling recorded a strong 80.89% turnout in Nandigram. But this election has had its own share of controversy. Remember, the Congress has alleged in Bengal, especially the state where the SIR was also done first, that there was vote theory, irregularities, malpractices, and have demanded a re-election, questioning the conduct of the polling process. And going by how these allegations fly, the BJP has rejected the charges. And for now in by-elections in Nandigram, BJP is leading by a massive margin.
10: আমরা তাই দাবি করছি রেজিনগর এবং নন্দীগ্রাম এই দুটো নির্বাচন বাতিল করতে হবে। এটা নির্বাচনের নামে প্রহসন।
11: কংগ্রেস এই ভোট মানছে না। আগামী দিনে যেন বিজেপি বলার চেষ্টা না করে যে আমরা জিতলাম, যেটা রুবেল বলছিল যে মুসলমান এলাকায় বিজেপি জিতছে, অতএব মুসলমান আমাদের পক্ষে চলে এসেছে, এই বাতাবরণ যেন বাংলার বুকে তারা প্রচার করতে না পারে। আজকে তার প্রোটেস্ট আমাদের এখান থেকে করা হচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে বলে আপনারা দেখুন ওখানে গিয়ে আমাদের কথাতে নিশ্চয়ই আপনারা ভরসা করেন, তবুও নিজের চোখে দেখুন আজকে রেজিনগরে কি হচ্ছে। বিজেপি সরকারে আছেই, তার জন্য কি এই উপনির্বাচনে এই লুট করার কি দরকার ছিল? মনে রাখবেন, এই লুট এই প্রশাসনকে কুৎসিতভাবে যে ব্যবহার করা হচ্ছে তার পরিণাম এ বাংলায় বিজেপি পার্টি আজ নয় কাল।
6: And it's not just Tamil Nadu and Bengal, it's also Puducherry, the neighbouring, of course, region for Tamil Nadu. And it's a big victory there already for the NDA. It's the NDA ally, AINRC, winning the Puducherry by-elections. It's Ashok Anand from AINRC's winning from the Thattanchavadi seat. This, remember, again, it is where NDA allies have managed to at least stand firm when it comes to Puducherry. And Thattanchavadi seat also, again, and this is a victory now, it's not about leading, has been won by AINRC's Ashok Anand, which is an NDA ally. This is the party that's otherwise also won in Puducherry. And that is why it's going to be very significant how the results are going to come in. This is the party previously also that has won. So it's a continued momentum for them. But again, at least for Puducherry, NDA is confirmed, even in by-elections. The catch will be Tamil Nadu and Bengal. Ananga Keshav, telling us about not just Thattanchavadi but also Puducherry in general. Tell us more about this region, a smaller place known largely as a tourist attraction. But when we talk about elections and next to Tamil Nadu, what is the significance of NDA victory here?

0: साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
1: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
2: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
3: एक परिवार, अटूट भरोसा।
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
5: सोच बदलो और बैंक भी।

आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज मोबाइल फोन पर है, सरकारी मदद अब सीधे बेनिफिशियरीज के खाते में जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करीब 50 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मुझे बताइए, जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो गई है, वो क्या मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो कितने चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा।

0: गलत नहीं हूं तो आपने 2650 दिन पूरे किए हुए हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की अगर सूची निकालें तो उसमें आपका ये टर्म तीन नंबर पे आता है, यानी आप दो एक नंबर पे भी जा सकते हैं आज की स्थिति में। तो शुरुआत तो मैं इसी से करना चाहूंगा कि कोई बड़ा चैलेंज आज की स्थिति में, जब आप लग रहे हैं कि आप सेटल्ड है महाराष्ट्र में एज अ चीफ मिनिस्टर, कोई बड़ा चैलेंज आपके सामने आज की स्थिति में?
1: देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि चैलेंजेस हमेशा रहते ही है। हम एक विकसनशील अर्थव्यवस्था है और विकसनशील अर्थव्यवस्था में हमेशा कोई ना कोई चैलेंज आपके सामने होता है। लेकिन अगर आप इमीडिएट चैलेंज की बात करेंगे तो इस वर्ष एल नीनो के कारण जिस प्रकार का सूखा और अकाल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है वो मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज है। करीब 75% महाराष्ट्र में जो हमारा क्रॉप है वो समाप्त हो गया है, ह्यूज क्रॉप लॉस। पीने के पानी की भी कुछ दिक्कत आगे आएगी, मवेशियों के लिए चारे की भी दिक्कत आएगी, तो अभी उसी का प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि वही सबसे बड़ा चैलेंज मैं मानता हूं आज।
0: लेकिन सूखा और महाराष्ट्र, क्योंकि आपने इसकी बात छेड़ी है, हम अलग अलग चैलेंजेस पे आएंगे और मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑफ कोर्स पॉलिटिकल चैलेंजेस में रहेगा, लेकिन शुरुआत हम इसी से करते हैं कि क्योंकि बहुत गंभीर समस्या है महाराष्ट्र जैसे राज्य में 75% तहसील, महाराष्ट्र का 75%

0: पेश किया हुआ है और उसका एक उपाय के तौर पर आपने इससे पहले जलयुक्त शिवार की घोषणा की थी जब आपके फर्स्ट टर्म में मुझे याद है, और आपने कहा था कि इसके वजह से सूखे की समस्या का हल निकल सकता है। दूसरा आपने कहा था कि कर्ज माफी हम करेंगे, बट दैट इज नॉट समथिंग विच यू ऑलवेज थॉट कि इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, बट अगेन इट लुक्स लाइक दैट कि आप उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बाकी राज्य उस तरीके से कर रहे हैं। तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है? और उसके साथ साथ एक सवाल यह भी रहेगा क्योंकि आपने कहा कि 1972 के बाद, 1972 के बाद यह सबसे बड़ा सूखा महाराष्ट्र फेस करने वाला है। 72 के जो सूखा था उसके बाद महाराष्ट्र ने पूरे देश को मनरेगा जिसे कहा जाता है वो योजना दी थी, तो क्या महाराष्ट्र उस तरीके से कुछ सोच रहा है?
1: देखिए, पहली बात तो अगर हम महाराष्ट्र की रचना को देखेंगे तो 52% महाराष्ट्र ड्राउट प्रोन है, तो
0: हमेशा
1: के 52%, क्योंकि ये रेन शैडो एरिया में इसका एक मेजर पोर्शन आता है जहां बारिश गिर नहीं पाती, जहां पर रिटर्न मानसून ही आता है। तो इसलिए आप अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक विडंबना भी हमको देखने को मिलती है कि देश के जो बड़े प्रकल्प है, बिग डैम्स, उसमें 40% डैम्स आर इन महाराष्ट्र।

0: Let's move on now to Punjab. Ahead of elections in Punjab, there is a speculation now emerging. Could the BJP and the Akali Dal again come together in the alliance? India Today has learned from our sources that the two former allies are eyeing a patch-up for the elections. BJP survey has predicted that alliance could win 80 of the 117 seats in the state, provided they contest together. Remember, they, of course, were in alliance, especially with regard to the union government, but had parted ways. The BJP is seeking a bigger role, though, in the alliance. The party is looking for at least 45 seats. But Akalis, on the other hand, whose existential crisis depends on Punjab elections, will push for Sukhbir Singh Badal as the chief minister face of their party and possibly of the alliance too. Seat sharing, chief minister face are some of the top discussions that could happen. But as we've seen in Punjab, it will most likely be a Sikh face anyway as a chief minister's designate. But the BJP has so far maintained that it would officially contest the elections alone. For now, that is the narrative. Last month, Union Minister Hardeep Singh Puri had said that the BJP will not compromise and will not just be a partner in an alliance. So it will be all about negotiations and discussions.
1: मैंने कहा वो जमाना गया कि हम उनके साथ कुछ समझौता करेंगे एंड वील बी द यंगर ब्रदर तो अरे तो 117 सीटें आ गया ना पहले ऐसी बाई लड़वाते सीखे और नाउ वी आर द नेशनल पार्टी वी आर द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड और साढ़े नाल गलपुट करनी तो इट विल हैव टू बी ऑन इक्वल टर्म्स बट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू व्हाट आई एम टेलिंग यू इज गिविंग माय व्यू ये नहीं होएगी कि अरे जी पिछली बार करो तुम्हारे पल्ले ही किया तुझे ये कर दो छोड़ दो यार द वर्ल्ड हैज चेंज्ड They have also changed. But the authentic position on this can only be given by your adhyaksha, the national adhyaksh, sade sangathan che jehde log hege, oh karange.
0: Himanshu Mishra with the latest on this. Himanshu, farmers protest aur dharne ki wajah se ye alliance toot gaya tha. Lekin kya aapko lagta hai ki Punjab mein kya change hoga? All right, Himanshu, stay on with me. I have some more breaking news coming in, and that is with regard to national capital, Delhi. Let's go across to that. It's the press conference from the Delhi police.
2: नमस्कार दिनांक 7/10/2026 को श्री सौरभ दास को कन्वीनर कांग्रेस जनता पार्टी का एक एप्लीकेशन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिसीव हुआ जिसके अनुसार ये इंटीमेशन दी गई कि 10 अक्टूबर
3: न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिसीव हुआ जिसके अनुसार ये इंटीमेशन दी गई
2: इस इंटीमेशन
3: प्रोटेस्ट करेंगे रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और पाया गया कि उक्त सूचना अत्यंत ही अल्प समय में प्राप्त हुई है जबकि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवेदन कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है यह उल्लेख करना भी इम्पोर्टेंट है

0: राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपी पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: नाइट क्रेविंग्स का क्या मैटर है? क्यों है कि मैंने 8 बजे अच्छे से खाना खा लिया है, आई हैड अ कंप्लीट मील, पर 11 बजे मैं फ्रिज के आगे क्यों खड़ी हुई हूँ?
1: इट्स वेरी इजी टू पुश अ ट्रक व्हेन 10 पीपल आर पुशिंग इट. यू हैड अ हेक्टिक डे, एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल फटीग, यू नेविगेटेड थ्रू द ट्रैफिक, यू नो व्हाट इट इज लाइक. इवन इफ यू आर बीइंग ड्रिवन, there are people who are crossing you, honking you, looking at you like this. That's one part. You work like 16-18 hours a day, you reach home 10:30, you've already broken the physiological stream of hormones. Subah, sunrise, sunset, you've already broken that. Stress kaun sa hormone badhata hai?
0: Cortisol.
1: Cortisol? At that point of time, what should cortisol be at night?
0: Should be dipping.
1: Yours is like beyond the roof. You have all the obvious reasons, and then you add petrol to the fire. You're watching your favorite show, a food show. Bus.
0: Ho gaya kaam.
1: 10 log jama ho gaye, truck bhaga ab. And then, what is going to get triggered? Hunger. This is what is happening. And

0: बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
1: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपीज पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है
5: ये है एक लेगेसी
6: यू नो डिजाइन कितने लाख से भी ज्यादा डोर
7: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड खूबसूरत कारीगरी भी हाई क्वालिटी भी
8: एक परिवार अटूट भरोसा
9: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम
10: यू सोच बदलो और बैंक भी
11: आप देख रहे क्या कर रहे हैं उनको
12: अ पॉलिटिकल स्टॉर्म ओवर ज्ञानेश कुमार्स रेजिग्नेशन
13: ऑल MPs ऑफ इंडिया ब्लॉक आर ऑफ जस्ट वन व्यू दैट ज्ञानेश कुमार मस्ट स्टेप डाउन
14: हम यहां हैं
12: India Today tracks the opposition's growing demand from the ground.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपीज पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका। उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक,
1: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima business privilege, rdf, there's nothing small about them.
0: Okay.
1: Oh, jeevan, nothing small about us.

0: राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपीज पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज मोबाइल फोन पर है, सरकारी मदद अब सीधे बेनिफिशियरीज के खाते में जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करीब 50 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मुझे बताइए, जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो गई है वो क्या मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो कितने चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा।

राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपीज पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।

0: So the top news break here at 4 p.m. on India Today is about what the Supreme Court has said. Have the protests been allowed? What about the mass shutdown, lockdown that we are witnessing across Delhi and at its border? So here's what the Supreme Court has said. A big observation on the Delhi cops' precautionary measures, saying no complete prohibition will be allowed on metro trains. Supreme Court also saying, though the inconvenience to otherwise passengers, the regular ones, that needs to be minimized. There shouldn't be a lot of inconvenience to people. But while the CGI maintains our concern is about the effect on the general commuters, it's high time that alternate space for larger, safer space for peaceful protest is designated with basic sanitation facilities. But does this mean that the protest continues to be illegal and unlawful in the manner in which police hasn't given permission, saying it had to be sought 10 days prior. That hasn't been done. It's a protocol that's not been followed. So what happens thereon? I want to bring in our legal correspondent, Anisha Mathur, here in the newsroom. Anisha, you're tracking all the hearing. What has the court said? And especially my direct question is the protest happening or not happening?
1: See, the Supreme Court has made its stand very clear. People have the right to protest. Police has the right to regulate. And in the words of Justice Bagchi, if you have not been given the permission to protest, your protest, therefore, is not lawful. Now, the CJP, of course, has been saying that the protest will continue. The lawyers have pointed out that there are detentions happening, that people are being told not to come to Delhi. People are being taken off trains that are heading to Delhi today.
0: Some of them have been cancelled also. The trains also have been cancelled.
1: See, trains have been cancelled tomorrow morning. Today, the trains that are coming into Delhi, people are already being taken off trains. That is the allegation that the lawyers are raising before the court. In fact, very serious allegations being raised about restriction on people's right to speak, restrictions on people's right to gather, because the petitioners are alleging that police teams have gone to hotels, they've gone to PGs, they've gone to RWAs, they've gone to mosques, they've gone to different places, saying do not come outside, do not join the protest tomorrow. They've also raised concerns about metro station shutdowns, train shutdowns, roadblocks. And what has the court said? If you look at it, effectively what they've said is that law and order, because it is the government's prerogative, it is the police's prerogative, we are asking you not to have a complete shutdown of train, metro and road services
0: because that affects everyone. And who are the petitioners? Who's representing the police or the government here?
1: See, the petitioners are multiple organizations and political parties. A battery of senior advocates really appeared. Kapil Sibal, A.M. Singhvi, Vrinda Grover, Nitya Ramakrishnan, Gopal Shankar Narayanan, Hariharan, C.U. Singh. A lot of senior lawyers who normally represent the opposition parties, NGOs, protest groups, etc., were in court today. And all of them are raising this issue of, can the government restrict the right to protest, restrict the right to gather in this manner? The court has made a very difficult tightrope walk, to be fair to the court, because on one side is the people's right to protest, which is inalienable. On the other side is the police's duty and the right to ensure law and order. And when the Solicitor General of India, appearing for the police, tells the court that, well, we have a history of violence, we have a history of offences being committed. He in fact alleged that in the last 3 days we've seen clashes between the police and the India Bloc.
0: And I think even the past incident of the CJP protest turning
1: violent was also pointed out, and that is why the government is making its stance very clear.
0: It's a catch-22, Anisha, for the police, because if they allow the protest, if it turns volatile, then the blame is on them. If they don't allow and then it leads to a scuffle like we're expecting tomorrow, that will also be on the police. Appreciate you joining us. Anisha Mathur is tracking all the latest on what the Supreme Court has said. It's a big observation. She's breaking it down for us. So for now, the court believes police has an opportunity and deserve to regulate, maintain law and order. But they also think that you cannot have inconvenience to the commuters. You cannot just block everyone from coming on the streets or speaking up. You cannot have a shutdown, lockdown, like a curfew in other areas. And that cannot be permitted. So there is perhaps a middle ground that the police will have to reach on. So here's what you are looking at. The details on your screen about what the Supreme Court has said and what exactly happened in the past 24 hours. We saw the Congress party that was allowed a protest. And they could go to Rajghat. But remember, their protest to Jantar Mantar also was not allowed. And that is what we are looking at. Will the CJP similarly not be allowed? What happens after that? The Delhi police says no permission for the protest scheduled by the Cockroach Janata Party tomorrow. That's 10th of October that the protest has been planned. The reason, by we are told, a senior police officer, Nupur Prasad, has said that 10 days is the margin with which you have to seek permission from the police. That wasn't done. And therefore, because that protocol wasn't followed, the protest cannot be granted permission. That's Joint CP, Nupur Prasad. And all the norms need to follow. And action will be taken against those who flout the norms, according to police. So what the administration and the police have done is taken several precautionary measures for the protest. 57 metro stations have been sought to be shut tomorrow. And most of these are around Jantar Mantar and Central Delhi. Several trains on October 10th will not be reaching Delhi from their originating stations. 200 CAPF companies have been deployed. Liquor shops, restaurants could be shut as well in Central Delhi. And Delhi police is making a request to the protesters, urging everyone to follow law and order, asking all those coming to the protest not to abuse, not to attack the cops. Police further said that, strangely, sometimes there is a journalist on the ground and the same journalist is seen joining the protesters the next day and is back to saying that they are journalists. That there has to be a demarcation here. Cover the protest, do not join it. This is amid allegations that journalists were harassed. But look at this video that's going viral. We go across to this mosque or a dargah, as it appears, and where a cop is seen making an announcement, asking the devotees not to let their children join the CJP protest. Most of them are elderly at the mosque, and that their children should not join the protest. CJP has announced, however, it will go ahead with the agitation. And that the protest is to save the nation, save the democracy.
2: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered, and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas, as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned. Because of not following the legal directions and their own undertaking and the prevalent law and order situation and to maintain public safety and law and order and traffic regulation, this time the permission is rejected, it is not given. It is important to mention that in New Delhi area, 163 BNSS is in operation, and under which to maintain public order and safety, reasonable preventive restriction is at place. It is further important to mention that if anybody violates the 163 BNSS provisions, then proper legal action will be taken against them.
3: आंदोलन होकर रहेगा क्योंकि जंतर मंतर इज अ डिजाइनेटेड प्रोटेस्ट साइट आर्टिकल 90 हमें प्रोटेस्ट का पूरा फंडामेंटल राइट देता है तो परमिशन की क्या जरूरत है 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले क्या इन्होंने परमिशन ली थी जनता की कल मैं बेंगलुरु से आ रहा हूँ जहाँ पर जिंदा लोगों को डेट डिक्लेयर कर दिया था उनके वोट काटे गए थे वो लोग जिंदा है क्या उनसे पूछा था आपने वोट काटने से पहले और आप चाहते हो कि जो लोग इलेक्शन रिग कर रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन न करें हम ऐसे तो नहीं चल सकते देश के लोकतंत्र बचाने के लिए देश का लोकतंत्र बचाने के लिए
0: So to be fair to the police also, remember, they have been facing accusations and allegations, though, of having misbehaved with the protesters, molestation even. But what the police are saying, look at our constables. They were injured, bloodied. Some of them had bite marks on them because of the protesters, had scratches all over their body, and some words that were extremely hurtful in nature for the men and women in uniform who are simply maintaining law and order. My colleague Arvind Ojha spoke to at least two of these constables, and here's what they are saying about what was done to them during the protest.
4: दुष्टम डेल्टा टू साहब हैं हमारे मंजीत सोरान साहब, उनके साथ में डिटेंशन की कार्रवाई चल रही थी। हम उनको पकड़ के खींच रहे थे, उनको बसों की तरफ डिटेंशन करके लेके जा रहे थे। उन्होंने जबरदस्ती हमारे को पीछे से कमर से पकड़ के खींचा और जानबूझ के गिराया। गिरने के बाद मेरा बॉडी वॉर्न कैमरा भी जमीन पे गिर गया। मेरे को एक सेकंड का टाइम लगा उसको उठाने के लिए। जैसे ही मैं उठ के जैसे ही मैं खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद मैंने चेक किया कि मेरा कैमरा ठीक है। जब भी मेरे को पीछे से किसी ने लात मारी, मैंने पीछे से मुड़ के देखा वो आदमी को। जैसे ही मेरा आई कॉन्टेक्ट उसके साथ हुआ, उसे लगा कि हाँ अब शायद ये मेरे को भी पकड़ेंगे। वो तुरंत राउंड अबाउट जो बना हुआ था उसके बीच में भाग गया, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने उसको पीछे करके एक तरीके से छुपा के और उसको भगा दिया वहाँ से कि आप जाइए यहाँ से।
5: देवेंद्र जी, आप भी गिरे हुए थे देखा?
6: हम जैसे खड़े होते ना, हम लोगों को डिटेन कर रहे थे, तो पीछे से एक आदमी आया था जो व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, और सर पे व्हाइट रंग का व्हाइट मतलब कपड़ा बांधा हुआ था। उसने ऐसे कंधे से पीछे खींचा तो गिरा दिया तुम दोनों को। फिर उन्होंने पड़े हुए लात मारी, फिर सर को लात मारी है, फिर वो भीड़ में अंदर किसी ने वहाँ पर प्रोटेस्ट करते उन्होंने अंदर भगा दिया उसको भीड़ से।
5: जो ड्यूटी आप कर रहे हैं प्रोटेस्ट के दौरान, किस तरह की दिक्कतें आ रही है? क्या सबके साथ मारपीट हुई?
4: सबके साथ तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे कि कोई पर्सनली खुंदस निकाल रहे हैं हमारे साथ में, और जबरदस्ती टारगेट करके नखुन मार दे रहे हैं, या लेडीजों को दांतों से काट दे रहे हैं, या जबरदस्ती हमारे को इस तरीके से हिट करके हमारी जैसे कि लाइन यार्ड पकड़ लेते हैं, या हमारी कैप उतार के फेंक देते हैं। मतलब एक तरह से पर्सनल अटैक कर रहे हैं बिल्कुल हमारे ऊपर, जैसे कि हमारी कोई पर्सनल खुंदस हो उनसे।
0: Let me go across to my colleague Anshul Singh, who's been tracking not just this protest, what will happen tomorrow, but the previous CJP protest as well. Anshul, what does the police do in this scenario now? They are doing precautionary measures. That's been criticized, that they are curbing the democratic right to protest. If the protest happens, there is scuffle, they will get the blame for that also. It's a catch-22 for Delhi police. Which way do you think they are going? Because eventually everyone should be allowed a right for peaceful protest.
7: Well, definitely, and that is what that is what Delhi Police says that they believe in, and there are guidelines that have been drawn by the Supreme Court itself, where the Supreme Court has said that if at all the number of protesters is actually more than 500, then the protest site should actually move towards Ramlila Maidan, and for that there is no police permission that is required. You need to take permission from the New Delhi Municipal Corporation, and that is what should have been done by the CJP, because it is expected that more than 10,000 people would be arriving in this protest, and hence the designated protest site for such a large protest is not Jantar Mantar. Also, the Delhi Police has made this abundantly clear that strict action would be taken against any person who would try to approach towards New Delhi with the intention of going ahead and carrying out this protest, and hence continuous announcements and awareness campaigns have also been launched from their side. So the Delhi Police is absolutely sure that they will not allow this protest to happen at Jantar Mantar in any way or any manner. If at all any person tries to get anywhere close to Jantar Mantar, they would be taken into custody, they would be detained, and then would be taken away. So definitely, everything that has been lined up till now, it seems like that tomorrow is going to be a very, very difficult day for the Delhi Police to not only ensure that the law and order situation is managed in this entire area of New Delhi and Central Delhi districts, but also to ensure that the image that has already taken a beating after the protest that happened on the 2nd, 3rd and 4th of October, that image is not ruined anymore. And somewhere or the other, they are able to give this message that whatever they are doing is to ensure that the law and order is maintained according to the constitution.
0: Keep tracking what exactly is the plan of the Kokro Janata Party and of the Delhi Police as well. Eventually, it is about law and order and to maintain peace on the streets of Delhi. Stay on with me. Here's what Delhi Police is doing this time. Earlier, remember, for several days, the Kokro Janata Party was on a dharna. It seemed all was peaceful. Then suddenly the numbers surged and confrontations happened with the Delhi Police, both sides getting serious injuries. This time, 57 metro stations already have been sought in writing to be shut. Most of these are around Central Delhi, including the one that's connected to LK Marg, which is the Prime Minister's residence. But primarily the stations that could be heading toward the Jantar Mantar area have been declared shut. Several trains from originating stations itself will not be allowed to touch down National Capital Delhi tomorrow. They've been cancelled. Repeated confirmations are coming in from the trains and their respective schedules. What about the deployment on the ground? 200 CAPF companies are deployed. We've already seen Rapid Action Force personnel who've been deployed. Anti-gear riot control vehicles are there. And the right gear have been given to the personnel as well, because the past few instances have shown the violence has escalated, especially when the stone pelting was reported during CJP protest. Liquor shops have been asked to remain shut, especially around Central Delhi area. Reports are also coming in that there could be some restaurants that would be asked to shut. More and more details are coming in, which appears to be that that area on a weekend, on a Saturday, could witness a complete shutdown. We're also looking at how a strategy change has happened from the cops. Video appeals to public, to elderly citizens, to avoid attending the protest. Don't send your children to the protest, because it's CJP protest, which is illegal right now. It's unlawful. Police has not granted permission. If they still come, they will be detained, arrested, or there could be a physical confrontation. We'll be tracking that and more details that are coming in about how the police will go ahead with this protest. To Chief Minister Devendra Fadnavis, because here's an interesting snippet. Remember Mumbai, where the CJP organized a protest a few days ago? It was peaceful, it was allowed, and the CJP also cooperated with the Mumbai police. Why can't Delhi do the same? This question was put to the Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, at the India Today conclave in Mumbai. Listen in.
8: मुंबई में हमने देखा कि अलग अलग मांगों को लेकर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, इससे पहले का प्रोटेस्ट हुआ. ये सारा जो माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? इज इट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस? इज इट बिकॉज ऑफ देर इज अ डिस्ट्रेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए सड़क पर नजर आ?
9: देखिए, मैं इसको दो कैटेगरी में विभाजित करना चाहता हूं. कुछ प्रोटेस्ट जेन्युइन है, लोगों की समस्या है, कभी किसानों की होती है, कभी आदिवासियों की होती है, कभी स्टूडेंट्स की होती है, और कुछ प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड है. ऐसा है कि अगर हम लोग कुल मिलाकर ये प्रोटेस्ट का डिजाइन देखें, जैसे मसलन सीजेपी की बात अगर हम करें, तो ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट एक हमारे देश में एक वीक अपोजिशन है. इस वीक अपोजिशन ने जो वैक्यूम तैयार किया है, उस वैक्यूम को भरने का प्रयास ये सीजेपी जैसे लोग कर रहे हैं.
8: ये एनालिसिस में पहली बार सुन रहा हूं.
9: बिल्कुल,
8: आप कह रहे हैं कि अपोजिशन वीक है, इसके वजह से सीजेपी
9: प्रोटेस्ट कर रहा है. मैं बिल्कुल बता रहा हूं. एक डिजाइन है, और ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट इस विचारों का डिजाइन है, कि जिसमें ये जो बिल्कुल अराजकतावादी ताकतें जो होती है, एनार्किस्ट, ये एनार्किस्ट फोर्सेस ये अलग अलग प्रकार से रीग्रुप होते हैं, अलग अलग प्रकार से, और उसका एक आविष्कार ये सीजेपी के रूप में हमको दिखाई पड़ता है. देखिए, ये सारे लोग जो है ये आइडियोलॉजी की लड़ाई हार चुके हैं. अब ये जानते हैं कि इनके आइडियोलॉजी पे लोग साथ में नहीं आने वाले. अब ये इश्यूज की लड़ाई पर आए, और इश्यूज की लड़ाई ये कभी भी कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी में आप लड़ ही सकते हैं, क्योंकि कभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में ग्लास पूरा भरा नहीं होता है. तो सरकार आधा भरा हुआ ग्लास दिखाती है, और इश्यूज के ऊपर आप आधा खाली ग्लास दिखा सकते हो. इस प्रकार की लड़ाई है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि इनका डिजाइन देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सीजेपी हो, ये सारे के सारे लोग संविधान दिखा दिखाकर ये सारे प्रोटेस्ट करते हैं. और प्रोटेस्ट क्या है? तो संविधान ने तैयार की हुई सारी संस्थाएं ये खराब है. आरबीआई भी खराब है, इलेक्शन कमीशन भी खराब है, सुप्रीम कोर्ट भी खराब है, सीएजी भी खराब है, ये सारी संस्थाएं खराब है. अब देखिए, ये डिजाइन ये है कि धीरे धीरे इन सारी संस्थाओं को डिमोनाइज करना. इनको डिमोनाइज करने के बाद ये बोलना कि देखिए, संविधान ने तैयार की हुई संस्थाएं आपको न्याय नहीं दे सकती. और फिर धीरे धीरे ये लोग इस बात को प्रतिपादित करेंगे कि ये संविधान आपको न्याय नहीं दे सकता, संविधान दिखा दिखा कर ही संविधान के खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है। ये लोग एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट व्यवस्था को लाना चाहते, एक ऐसी व्यवस्था की जो, और ये मैं नहीं कहता, आप देखिए जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में जो एनआरकी की बात की थी, अगर आप उसको पढ़ेंगे बिल्कुल सेम उसी डिजाइन से काम चल रहा है, उसी डिजाइन से, मतलब कोई भी लॉजिकल बात नहीं कहना, और किसी ने लॉजिकल बात कही तो उसको एक प्रकार से ट्रोल कर देना, ये बिल्कुल इनका एक डिजाइन है कि जिस डिजाइन के तहत इस देश में एनआरकी लाकर एनार्किस्ट फोर्सेस यहां पर अल्ट्रा लेफ्टिस्ट व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, और अब इसमें सीजेपी और कांग्रेस में होड़ लगी है।
8: देयर इज अ कंपटीशन,
9: कंपटीशन।
8: लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि पिछली बार जब सीजेपी का प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ था, द गवर्नमेंट एंगेज्ड विद देम, द गवर्नमेंट ने वहां पर दो बड़े सीनियर मंत्री वहां पर भेजे, उनके साथ में बात की। अगर वो एनार्किस्ट फोर्सेस है तो उनके साथ में सरकार ने बातचीत क्यों शुरू की, नंबर एक। नंबर दो, आप कह रहे हैं कि उनकी डिमांड है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन क्या पेपर लीक की वजह से जो जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी इस्तीफे की मांग करना, आपने भी तो कई बार आंदोलन किया होगा, महाराष्ट्र में मैंने आपको कई बार मंत्रियों का इस्तीफा मांगते हुए आंदोलन करते हुए देखा हुआ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आंदोलन करते हुए देखा हुआ है, तो पेपर लीक को लेकर मंत्री का इस्तीफा मांगना ये लॉजिकल कैसे नहीं है, किस तरीके से आप उसको रखें?
9: देखिए पहली बात तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो एंगेज किया ऐसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल करना ही चाहिए, अगर आप डेमोक्रेसी को मानते तो आपको सबके साथ बातचीत करनी पड़ती है। हम लोगों ने तो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो नक्सलवादी थे उनके साथ भी बातचीत की, उनके साथ भी बातचीत की ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में करनी पड़ती है आपको, डेमोक्रेसी में बातचीत से ही हल निकलता है और हल निकालने का प्रयास करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजी हमको मंजूर है, या वो जो करते हैं वो मंजूर है, या जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को मार दिया ये हमको ठीक था इसलिए हमने उनसे बात की, ऐसा नहीं होता है। फिर भी प्रयास ये करना पड़ता है कि आप एंगेज विद द पीपल, Try to persuade them, try to convince them, और नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान ने आपको जिस प्रकार से जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आप देखिए नीट का पेपर लीक हुआ, गलत हुआ, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। उसके बाद गवर्नमेंट ने नीट की परीक्षा ली, ट्रांसपेरेंट परीक्षा हुई, परीक्षा का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद आप जंतर मंतर पे जमा होते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमा हुई है, आपको इस्तीफा मांगने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन वहां पर हो रहा था, जिस प्रकार की भद्दी गालियां प्रधानमंत्री जी के निकाली जा रही थी, और जिस प्रकार के वहां पर वाकयात थे, अब तो सामने आ रहा है 2000 तो ऐसे लोग थे वहां पर जो हिस्ट्री शीटर्स है, जिनके खिलाफ बहुत जघन्य इस प्रकार के अपराध है, तो ये जो सारा, देखिए इसको अराजकता कहते हैं, दिस इज एनार्की, इस्तीफा मांगना इज नॉट एनार्की, आप उपोषण करें ये एनार्की नहीं है, लेकिन इस प्रकार के लोगों को जमा करके और जिस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा था, जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार हो रहा था, ये एनार्की।
8: लेकिन फिर भी जो आंदोलनकारी, उन्होंने तो आपकी तारीफ की, मतलब जितना मैंने सुना है उसमें तो हमने देखा कि वो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, उन्होंने हम पर लाठीचार्ज नहीं किया, उन्होंने हमें आंदोलन करने दिया, जबकि दिल्ली में हमने देखा कि उसको लेकर काफी गुस्सा था कि लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी रही, आप मतलब आपका नजरिया थोड़ा अलग है उसको लेकर, या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से दिल्ली का आंदोलन हैंडल किया जा सकता था?
9: ऐसा है कि अगर मेरी आपके मालिक को गाली देने की इच्छा है तो मैं कहूंगा साहिल अच्छा आदमी है, मालिक खराब है, प्रॉब्लम मालिक का है, साहिल बहुत बढ़िया आदमी है, साहिल जैसा आदमी नहीं है, ये बहुत कॉमन है, इससे साहिल ने खुश नहीं होना चाहिए, साहिल को समझना नहीं, होना ही नहीं चाहिए साहिल को, ये समझना, अगर साहिल को ये समझा नहीं कि भाई ये किस लिए बोल रहे हैं कि साहिल बहुत अच्छा आदमी है, तो फिर तो मतलब सॉरी टू से, पर इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो नहीं सकती ना साहिल।
8: चलिए ठीक है आप, लेकिन मैं ये तो पूछ सकता हूं ना कि जो दिखता है वो तो हम पूछ ही सकते हैं ना, कि ये बात भी तो सही है कि आपकी पुलिस ने बड़ी समझदारी से इस पूरे आंदोलन को हैंडल किया, देयर वाज नॉट अ सिंगल केस ऑफ लाठी चार्ज, देयर वाज नॉट अ सिंगल केस ऑफ फायरिंग, मतलब जो टीयर गैस छोड़ा जाता है. देर इज नो नॉट अ सिंगल केस ऑफ दैट. कोई ब्रुटैलिटी की खबर नहीं आई. इनफैक्ट महाराष्ट्र वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सबसे पहले केसेस वापस लेने में भी महाराष्ट्र था. कोई भी ऐसी धाराएं FIR में नहीं लगाई गई जिसके वजह से आप उनको क्रिमिनलाइज करें या स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े. ये भी तो रियलिटी है. इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो तारीफ हो रही है.
9: देखिए
8: अब इसमें आप वो तारीफ नहीं लेना चाहते, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता.
9: देखिए अगर वो सही मन से तारीफ करते ना तो मैं खुशी खुशी तारीफ ले भी लेता, उनको थैंक यू भी बोल देता. पर उस तारीफ के पीछे का डिजाइन मुझे मालूम है.
8: देयर इज अ ट्रैप.
9: इसलिए ऐसी तारीफ ठीक है. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नॉर्मली महाराष्ट्र में हमेशा हमारी ये पॉलिसी रही है कि जहां तक हो सके एंगेज करिए, और जब तक कानून व्यवस्था का एक्सट्रीम प्रयास मतलब को एक्सट्रीम हानि जब तक नहीं पहुंचती है तब तक हम बल का प्रयोग नहीं करते. लेकिन कभी कभी ये होता है, आप देखिए जैसे दिल्ली में हुआ कि अगर ये लोग संसद चले जाते, सवाल वो नहीं होता है कुछ लोग संसद चले जाएंगे तोड़फोड़ करेंगे, इससे देश की बदनामी होती है, इससे पुलिस फोर्स की बदनामी होती है, और दुनिया में यह संदेशा जाता है कि ये देखिए कितनी वीक डेमोक्रेसी है, ये कितनी वीक कंट्री है कि जिसके संसद में लोग घुस जाते हैं और संसद के अंदर एक प्रकार से तोड़फोड़ हो जाती है, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है. देश की अल्टीमेटली एक जो हमारा डिटेरेंट होता है दुनिया में एक मजबूत देश, ये उसके लिए इसकी हानि होती है. ये तो इसीलिए कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि जब कोई मानने को तैयार नहीं होता, लोग कानून हाथ में ले लेते हैं, जो संविधानिक व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को तोड़ देते हैं, तो बल का प्रयोग तो करना पड़ता है. पर बल का प्रयोग अंतिम होना चाहिए, और महाराष्ट्र में हम लोग बहुत संयम के साथ प्रयास ये करते हैं कि बल का प्रयोग कम से कम करना पड़े.
0: बट वी ऑल्सो ब्रिंग टू यू ऑल साइड्स ऑफ द स्टोरी. इंडिया टुडे स्पोक टू द सेना UVT MLA आदित्य ठाकरे. व्हाट इज ही सेइंग अबाउट द SR एक्सरसाइज, अबाउट द प्रोटेस्ट, एंड स्पेशली अबाउट द इश्यू ऑफ द CJP?
10: You're saying there is vote chori, but you're also saying in the same breath that there have been a large number of fraudulent duplicate voters in Mumbai itself, right? Election Commission is saying we are cleaning up the rolls. We are removing those very same duplicate fraudulent voters in a city like Mumbai. What's wrong with that?
11: My hope was genuine in SIR. We thought that the SIR would clean up the list.
10: Yes.
11: But today what we are seeing are some startling details where lakhs and lakhs of voters who have voted in 2002, who have voted in 2007, who have voted in 2009, who have voted in 2014, who have voted in 2019, who have voted in 2024, who have voted right now in 2026, have been omitted from the list. Lakhs and lakhs of voters. The SIR, if conducted properly, would have been a huge boon for India. But today, as it goes, and you've seen our election commission also, he's also made a formal complaint with the ECI, saying, give us the authority to take call at the local level. EROs don't have power.
10: So let's be very clear. You're saying you're not against the SIR. You want an SIR. You want a cleanup of the rolls. You're saying the manner in which it's been executed, with lakhs of voters losing out, at the moment on a draft electoral roll, mind you only, it's the execution you have a problem with, not with an SIR per se. Am I correct?
11: I think that's what everyone's saying. Everyone wants a clean list.
10: I'll
11: tell you why.
10: There are those who are saying we want a pre-SIR. The Cockroach Janata Party is saying, please go back to electoral rolls pre-SIR. The Congress is saying, suspend the entire SIR process. Is that what you're saying
11: also? I'll tell you why everyone's saying this. Because the special intensive revision is supposed to be carried out in special times. One. Two, if you genuinely believe that a special intensive revision is supposed to be carried out right now, conduct it in a clean, clear, fair and fearless manner. Why are you going by the diktats of the BJP? Why is Gyanesh Kumar serving the BJP and not the country? This is Deshdrohi, and this is what everyone's against. Bring someone like Mr. T.N. Session. Bring someone like Tukaram Munde. Hold us accountable if you want to, but conduct an SIR which is free and fair. Today what is happening is an exercise that is happening for the benefit of the BJP by Gaddar, Gyanesh and Seema Khanna. That is what everyone is against.
0: So, big political showdown, a lot of claims and counterclaims coming in. Eventually, the big test will be on Saturday morning about how will this protest, if at all, will be allowed. I'm heading to a very short break. Stay tuned. crime scene coming up next. The top crime stories of the country. A lot of questions unanswered. All that and more after a minute.

0: साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले।
1: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
2: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
3: एक परिवार अटूट भरोसा।

0: It's a big news break coming in. Multiple FIRs have been filed since 2nd of October, where especially the India bloc as opposition had been organizing protests. Remember, the Rajghat protest was allowed. They were escorted, accompanied by the police, by the RAF, and allowed to touch down the Rajghat. But before that, the protests were not being permitted at all. And that is why it's noticeable how that means, and because it led to physical confrontation as well, injury to cops, and allegations against the police too, FIRs have been filed. Let's just take a look about what the reason behind these FIRs are and how the police is also, remember, doubling down in these cases. Now, what I have is the latest is 27 FIRs registered and in total 18 FIRs also, while section, and this is with regard to how public servant is being disallowed and interrupted with his duties. 9 FIRs are also invoking Section 3 of the PDPP Act. I want to get all these details done. So different sections have been filed. Heading our crime bureau, Arvind Oja is joining me. Arvind, 27 FIRs. Kiske khilaf ye FIR file hui hain? Aur kyun file hui hain? Kis tarah ke charges aur sections isme add kiye gaye hain BNS?
1: देखिए 2 अक्टूबर से लेकर और आज तक अभी भी नई दिल्ली इलाके में प्रोटेस्ट चल रहा है और 2 अक्टूबर से अब तक जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अलग अलग पुलिस स्टेशन में 27 एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। जो प्रोटेस्ट है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से हुआ है। आपको याद होगा पूजा की आकाशवाणी भवन में भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फोर्सफुली इंटर कर गए थे और आकाशवाणी भवन की तरफ से भी पुलिस को कंप्लेन दी गई थी, तो उस मामले में भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है जिसमें अक्यूज के तौर पर तो नहीं लेकिन एफआईआर की डिटेल में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम है और कई एमपीज का नाम है, अननोन लोगों का नाम है। उसमें ट्रेस पासिंग की एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके अलावा पुलिस पर्सनल को असॉल्ट करने की एफआईआर दर्ज हुई है। कई कंप्लेंट ऐसी दी गई और इंडिया टुडे ने उन पुलिस कर्मियों से बात की जिनको जिन्होंने बताया कि उन्हें काम से रोकने की कोशिश की गई, उन पर अटैक किया गया, तो सरकारी काम में बाधा डालने की। और सबसे ज्यादा जो एफआईआर 27 एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ उसमें कॉमन इंटेंशन के तहत प्रोटेस्ट करने का सेक्शन भी लगाया गया है। यानी आगे चलकर अगर ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये जो कॉमन इंटेंशन का सेक्शन लगाया गया ये कॉन्स्पिरेसी में भी तब्दील हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन में आगे आ सकता है कि किस तरह से एक साजिश के तहत ये लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था जिसमें जो 163 बीएनएस है उसको तोड़ा गया, पुलिस को असॉल्ट किया गया, पुलिस को काम करने से रोका गया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई। तो अलग अलग पुलिस स्टेशन में लेफ्ट पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ और अननोन लोगों के खिलाफ 27 एफआईआर अभी तक रजिस्टर्ड हुआ है। कुछ लोगों को
0: पुलिस दैट यू आर ब्रिंगिंग टू अस अरविंद, 27 एफआईआर अकॉर्डिंग टू हिज सोर्सेज हैव बीन कंफर्मड, बट डज दिस मीन इट कुड बी ट्रबल ब्रूइंग, स्पेशली फॉर द ऑपोजिशन लीडर्स और द कांग्रेस लीडर्स हु लेड दैट मार्च एंड प्रोटेस्ट वेयर द फिजिकल scuffle and confrontation happened. Arvind, please stay on with me. I have a big news coming in. Let's take a look at what the Delhi police is up to ahead of the protest that's scheduled tomorrow. A high-level meeting of senior police officers is currently on at the headquarters. They want to be absolutely sure, one, that their own personnel do not get hit and injured, but two, law and order is maintained, and number three, you have to let democracy prevail. Right to protest is a democratic protest, and if the police appears to be doing a shutdown, it also maligns the image of the police. Arvind Oja joins me for the latest on that. Arvind, इस मीटिंग में किस रैंक के सीनियर ऑफिशियल्स दिल्ली पुलिस के इन्वॉल्व हैं? What kind of strategy do you think is in place? And as I'm looking at these visuals, it's such a catch-22 situation for the Delhi police. There have been the allegations against the Delhi police have been that they have misbehaved with the youth of this country. They have molested and groped young female protesters. They have hit the protesters badly. And this is not just about young protesters otherwise or the CJP or the Gen Z, so to say. But the India bloc leaders have made that allegation. From Rahul Gandhi to Mahua Moitra, other leaders have said, we were also hit badly. Imran Masood has defended the Congress party leaders, saying that any response by the Congress leaders was only because the police was misbehaving. So with this high-level meeting that is presently on at the headquarters, a strategy will be put in place on the paper and for very clear clarity among all the senior police officials to then inform the constables on the ground as well. Because remember, it's not usually the senior IPS officers who are caught in that mayhem. It's the constables on the ground, men and women in uniform who have to deal with the detentions and more. So there will have to be an absolute clear view about how that needs to be done. If the protest is illegal, if the protest has been deemed unlawful, as the Joint CP Nupur Prasad said a few hours ago in that press conference, the top Delhi police officials will have to ensure that, especially when the cameras are rolling and the visual evidence is for all to see, you cannot have instances of the police thrashing young ones, not even senior political leaders. They're reviewing the emerging law and order situation, especially ahead of the protest. What kind of deployment will be needed? Women and male personnel. Is Delhi police enough? Do they have the rapid action force? Or other companies of the CAPF will also have to join in. They'll examine also the recent observations made by the Supreme Court. Supreme Court has said, we understand you have to regulate law and order, but you have to minimize the inconvenience that is being caused to the commuters on the ground. Delhi Police's top officials are holding this meeting at the Delhi Police headquarters in central Delhi ahead of especially the CJP protest, a protest that has been denied permission. That has been denied permission, but the CJP, remember, has said they are going to be at the protest venue. They will be on the ground. Doesn't matter if they've been given permission or not. In a situation like this, remember, barricades will be set up. The protesters will not be allowed, and they maintain that they will be anyway marching. That means the police will stop them. What happens when the protesters intend to march and the police will stop? There is going to be a confrontation, and that is where the police will have to be prepared. Now, just to give you a background, ladies and gentlemen, there cannot be force immediately used. There are parameters. So there is, of course, announcements that are made. There are barricades. Then comes the water cannons. Then possibly a bit of lathi charge. And then from there, the detentions can also happen. And that is where the confrontation usually takes a violent turn. So all of this, while will be deployed, will the CJP protest back out? Arvind Oja is joining us on the latest on that. Arvind, kis rank ke officials is meeting mein honge? Kya strategy rahegi? Kyunki police agar protest allow nahi karti hai, confrontation hoti hai, to bhi unko criticism aayega. Aur agar allow karti hai aur phir scuffle hota hai, to bhi unko criticism aayega. Kis tarah se wo review kar rahe hain law and order?
2: देखिए, बीच में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, इलाके के डीसीपी और स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर शामिल हैं और ये मीटिंग दिल्ली पुलिस मुख्यालय में चल रही है. और अभी कुछ देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें जो इंस्ट्रक्शन पास है उसको लेकर भी डिस्कशन हो रहा है. दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो सिर्फ नई दिल्ली इलाके में नहीं पूजा, बल्कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में और पूरी दिल्ली में जगह जगह पर पुलिस लोगों से अपील कर रही है, लाउडस्पीकर से लोगों के बीच जा रही है, उनको बता रही है कि नई दिल्ली इलाके में बीएनएफ का धारा 163 लगा हुआ है, वहां पर प्रोटेस्ट इलीगल है, वहां पर कोई नहीं जाएगा. तो पूरी दिल्ली में बॉर्डर एरिया में जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है और किस तरह से अगर कोई प्रोटेस्ट होता है कल और प्रोटेस्ट करने की कोशिश होती है और भारी भीड़ आती है तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा, उसको लेकर ये पूरी मीटिंग हो रही है जिसमें दिल्ली पुलिस के ऑफिसर एक रणनीति बना रहे हैं जिससे कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस की खराब ना हो. पूजा,
0: ऑलराइट, इवेंचुअली रिमेंबर यू आर टॉकिंग अबाउट राजधानी दिल्ली एंड यू हैव टू बी एज अ नेशनल कैपिटल आल्सो सेट अ बेंचमार्क ऑफ पीस एंड ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट. The first statement has come from the Minister of External Affairs on the US government crackdown and on strict imposition of rules when it comes to the H-1B visa workers, especially the impact of it, even though it's not specific, of course, to Indians. But we understand, remember, the tech companies do cater and do attract in thousands Indian professionals, skilled, educated professionals in their tech companies. Many say it is the Indians or the Indian origin individuals and professionals who are literally leading some of these tech giants. But here's what has happened. India has hit out especially at US Vice President J.D. Vance for labeling H-1B visa holders and these foreign tech professionals as foreign indentured servants. Like,

0: साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
1: जिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
2: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
3: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
1: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीद

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी।
5: यू नो डिजाइंस कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर,
6: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
7: एक परिवार, अटूट भरोसा।
8: So many payment apps, but which one is safe?
9: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
10: It's the Mahi way.
11: आप देख रहे क्या कर रहे हैं उनको?
12: A political storm over Gyanesh Kumar's resignation.
13: All MPs of India block are of just one view that Gyanesh Kumar must step down.
12: India Today tracks the opposition's growing demand from the ground.
14: Rahul Gandhi has gotten off the bus.
15: All senior leaders are yet to be detained.
14: And there is high drama unfolding.
16: This is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.

0: He should apologize immediately.
1: ऐसे नहीं होगा आप प्लीज को ऐसे नहीं होगा आप बताइए कैसे होगा आपने इसको धकेला नीचे
2: नहीं सर आप बताइए कैसे होगा आप बताइए The Congress is accusing police of brutality against party leaders and claims that Priyanka Gandhi was scratched by police personnel.
3: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. They are beating members of parliament. Their police members have scratched me all over. They have thrown us to the ground and now we are not going to move from here. Let them call their forces back. I will not move from here.
4: हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रही है पुलिस, मारपीट धक्का मुक्की करने का कोशिश कर रही है। नहीं नहीं राहुल जी उतर करके बैठिए, अब हम यही बैठेंगे। नहीं नहीं हम यही बैठेंगे अब।
5: नहीं आप लोग सिट इन प्रोटेस्ट करेंगे?
4: नहीं नहीं हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे यहीं पे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?
6: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: टू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपीज पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।

0: नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी।
2: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर
3: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: यार लोन भूल गया। मैरी
6: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
7: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
5: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
7: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
8: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
9: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

किया है, लेकिन उन्होंने इतना नेगेटिव नहीं है। हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस। वी सेड यस, राहुल जी ऑल्सो सेड यस, वी विल सेंड यू द डिटेल्स एविडेंस एंड नॉट ओनली वी द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो दे सेड। नाउ दे आर इनर पीपल ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ऑल दिस कंसर्न, सो कंट्री इज कंसर्न वेरी मच एंड यू एज ए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज टेक प्रॉपर केयर सो दैट द डेमोक्रेसी शुड रिमेन एंड इट्स रिपब्लिक इंडिया मस्ट कंटिन्यू। दिस इज वी आर टूगेदर इंडियन अलायंस एंड वी आर वेरी स्ट्रांग। इट इज नॉट दैट ओनली कांग्रेस पार्टी इज सेइंग, इट इज द इंडिया।

0: ये आपका थर्ड टर्म है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने 2650 दिन पूरे किए हुए हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की अगर सूची निकालें तो उसमें आपका ये टर्म तीन नंबर पे आता है, यानी आप दो एक नंबर पे भी जा सकते हैं आज की स्थिति में। तो शुरुआत तो मैं इसी से करना चाहूंगा कि कोई बड़ा चैलेंज आज की स्थिति में, जब आप लग रहे हैं कि आप सेटल्ड है महाराष्ट्र में एज अ चीफ मिनिस्टर, कोई बड़ा चैलेंज आपके सामने आज की स्थिति में?
1: देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि चैलेंजेस हमेशा रहते ही है। हम एक विकसनशील अर्थव्यवस्था है और विकसनशील अर्थव्यवस्था में हमेशा कोई ना कोई चैलेंज आपके सामने होता है। लेकिन अगर आप इमीडिएट चैलेंज की बात करेंगे तो इस वर्ष एल नीनो के कारण जिस प्रकार का सूखा और अकाल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है वो मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज है। करीब 75% महाराष्ट्र में जो हमारा क्रॉप है वो समाप्त हो गया है, ह्यूज क्रॉप लॉस। पीने के पानी की भी कुछ दिक्कत आगे आएगी, मवेशियों के लिए चारे की भी दिक्कत आएगी, तो अभी उसी का प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि वही सबसे बड़ा चैलेंज मैं मानता हूँ आज।
0: सर, दूसरी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आप जब भी सत्ता में आ जाते हैं अचानक लोग सड़क पे दिखना शुरू हो जाता है अलग अलग इलाकों में। जैसे पहले टर्म में हमने देखा कि देर वर लार्ज नंबर ऑफ मराठा प्रोटेस्ट आस्किंग फॉर द मराठा कोटा, फिर उसके बाद आपने बिल लाया और मराठा आरक्षण आपने लागू किया। इस बार आपका टर्म शुरू हो गया और पूरे देश भर में एक माहौल बनाया कि जिसके वजह से अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं। ट्राइबल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एमपीएससी के स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुंबई में हमने देखा कि अलग अलग मांगों को लेकर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, इससे पहले का प्रोटेस्ट हुआ। ये सारा जो माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? इज इट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इज इट बिकॉज ऑफ देयर इज अ डिस्ट्रेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए सड़क पर नजर आ?
1: देखिए, मैं इसको दो कैटेगरी में विभाजित करना चाहता हूं। कुछ प्रोटेस्ट जेन्युइन है, लोगों की समस्या है, कभी किसानों की होती है, कभी आदिवासियों की होती है, कभी स्टूडेंट्स की होती है, और कुछ प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड है। ऐसा है कि अगर हम लोग कुल मिलाकर ये प्रोटेस्ट का डिजाइन देखें, जैसे मसलन सीजेपी की बात अगर हम करें तो ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट एक हमारे देश में एक जो एक वीक अपोजिशन है, इस वीक अपोजिशन ने जो वैक्यूम तैयार किया है उस वैक्यूम को भरने का प्रयास ये सीजेपी जैसे लोग कर रहे हैं।
0: ये एनालिसिस में पहली बार सुन रहा हूं।
1: बिल्कुल,
0: आप कह रहे हैं कि अपोजिशन वीक है इसके वजह से सीजेपी प्रोटेस्ट?
1: मैं बिल्कुल बता रहा हूं, एक डिजाइन है और ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट इस विचारों का डिजाइन है कि जिसमें ये जो बिल्कुल अराजकतावादी ताकतें जो होती है एनार्किस्ट, ये एनार्किस्ट फोर्सेस ये अलग अलग प्रकार से रीग्रुप होते हैं अलग अलग प्रकार से, और उसका एक आविष्कार ये सीजेपी के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। देखिए, ये सारे लोग जो है ये आइडियोलॉजी की लड़ाई हार चुके हैं। अब ये जानते हैं कि इनके आइडियोलॉजी पे लोग साथ में नहीं आने वाले, अब ये इश्यूज की लड़ाई पर आए, और इश्यूज की लड़ाई ये कभी भी कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी में आप लड़ ही सकते हैं, क्योंकि कभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में ग्लास पूरा भरा नहीं होता है। तो सरकार आधा भरा हुआ ग्लास दिखाती है और इश्यूज के ऊपर आप आधा खाली ग्लास दिखा सकते हो, इस प्रकार की लड़ाई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि इनका डिजाइन देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सीजेपी हो, ये सारे के सारे लोग संविधान दिखा दिखा कर ये सारे प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट क्या है? तो संविधान ने तैयार की हुई सारी संस्थाएं ये खराब है, आरबीआई भी खराब है, इलेक्शन कमीशन भी खराब है, सुप्रीम कोर्ट भी खराब है, सीएजी भी खराब है, ये सारी संस्थाएं खराब है। अब देखिए, ये डिजाइन ये है कि धीरे धीरे इन सारी संस्थाओं को डिमोनाइज करना, इनको डिमोनाइज करने के बाद ये बोलना कि देखिए संविधान ने तैयार की हुई संस्थाएं आपको न्याय नहीं दे सकती, और फिर धीरे धीरे ये लोग इस बात को प्रतिपादित करेंगे कि ये संविधान आपको न्याय नहीं दे सकता, संविधान दिखा दिखा कर ही संविधान के खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है। ये लोग एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट व्यवस्था को लाना चाहते, एक ऐसी व्यवस्था की जो, और ये मैं नहीं कहता, आप देखिए जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में जो एनआरकी की बात की थी, अगर आप उसको पढ़ेंगे बिल्कुल सेम उसी डिजाइन से काम चल रहा है, उसी डिजाइन से, मतलब कोई भी लॉजिकल बात नहीं कहना, और किसी ने लॉजिकल बात कही तो उसको एक प्रकार से ट्रोल कर देना, ये बिल्कुल इनका एक डिजाइन है कि जिस डिजाइन के तहत इस देश में एनआरकी लाकर एनआरकिस्ट फोर्सेस यहां पर अल्ट्रा लेफ्टिस्ट व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, और अब इसमें सीजेपी और कांग्रेस में होड़ लगी है,
0: देयर इज अ कंपटीशन
1: लेकिन
0: एक बात समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि पिछली बार जब सीजेपी का प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ था, द गवर्नमेंट एंगेज्ड विद देम, द गवर्नमेंट ने वहां पर दो बड़े सीनियर मंत्री वहां पर भेजे, उनके साथ में बात की, अगर वो एनार्किस्ट फोर्सेस है तो उनके साथ में सरकार ने बातचीत क्यों शुरू की, नंबर एक। नंबर दो, आप कह रहे हैं कि उनकी डिमांड है उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन क्या पेपर लीक की वजह से जो जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी इस्तीफे की मांग करना, आपने भी तो कई बार आंदोलन किया होगा, महाराष्ट्र में मैंने आपको कई बार मंत्रियों का इस्तीफा मांगते हुए आंदोलन करते हुए देखा हुआ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आंदोलन करते हुए देखा हुआ है, तो पेपर लीक को लेकर मंत्री का इस्तीफा मांगना ये लॉजिकल कैसे नहीं है, किस तरीके से आप उसको रखें?
1: देखिए पहली बात तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो एंगेज किया ऐसा आप कह रहे हैं बिल्कुल करना ही चाहिए, अगर आप डेमोक्रेसी को मानते हैं तो आपको सबके साथ बातचीत करनी पड़ती है, हम लोगों ने तो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो नक्सलवादी थे उनके साथ भी बातचीत की ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में करनी पड़ती है आपको, डेमोक्रेसी में बातचीत से ही हल निकलता है और हल निकालने का प्रयास करना पड़ता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजी हमको मंजूर है या वो जो करते हैं वो मंजूर है या जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को मार दिया ये हमको ठीक था इसलिए हमने उनसे बात की, ऐसा नहीं होता है, फिर भी प्रयास ये करना पड़ता है कि आप एंगेज विद द पीपल, Try to persuade them, try to convince them, और नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो संविधान ने आपको जिस प्रकार से जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है, सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आप देखिए नीट का पेपर लीक हुआ, गलत हुआ, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, उसके बाद गवर्नमेंट ने नीट की परीक्षा ली, ट्रांसपेरेंट परीक्षा हुई, परीक्षा का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद आप जंतर मंतर पे जमा होते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमा हुई है, आपको इस्तीफा मांगने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन वहां पर हो रहा था, जिस प्रकार की भद्दी गालियां प्रधानमंत्री जी के निकाली जा रही थी और जिस प्रकार के वहां पर वाकयात थे, अब तो सामने आ रहा है 2000 तो ऐसे लोग थे वहां पर जो हिस्ट्री शीटर्स है जिनके खिलाफ बहुत जघन्य इस प्रकार के अपराध है, तो ये जो सारा देखिए इसको अराजकता कहते हैं, दिस इज एनआरकी, इस्तीफा मांगना इज नॉट एनआरकी, आप उपोषण करें ये एनआरकी नहीं है, लेकिन इस प्रकार के लोगों को जमा करके और जिस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा था, जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार हो रहा था, ये एनआरकी।
0: लेकिन फिर भी जो आंदोलनकारी उन्होंने तो आपकी तारीफ की, मतलब जितना मैंने सुना है उसमें तो हमने देखा कि वो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, उन्होंने हम पर लाठीचार्ज नहीं किया, उन्होंने हमें आंदोलन करने दिया, जबकि दिल्ली में हमने देखा कि उसको लेकर काफी गुस्सा था कि लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी रही, आप मतलब आपका नजरिया थोड़ा अलग है उसको लेकर, या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से दिल्ली का आंदोलन हैंडल किया जा सकता था?
1: ऐसा है कि अगर मेरी आपके मालिक को गाली देने की इच्छा है तो मैं कहूंगा साहिल अच्छा आदमी है, मालिक खराब है, प्रॉब्लम मालिक का है, साहिल बहुत बढ़िया आदमी है, साहिल जैसा आदमी नहीं है, ये बहुत कॉमन है, इससे साहिल ने खुश नहीं होना चाहिए, साहिल को समझना नहीं होना ही नहीं चाहिए, साहिल को ये समझना, अगर साहिल को ये समझा नहीं कि भाई ये किस लिए बोल रहे हैं कि साहिल बहुत अच्छा आदमी है तो फिर तो मतलब सॉरी टू से, पर इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो नहीं सकती ना साहिल।
0: चलिए ठीक है आप, लेकिन मैं ये तो पूछ सकता हूं ना कि जो दिखता है वो तो हम पूछ ही सकते हैं ना, कि ये बात भी तो सही है कि आपकी पुलिस ने बड़ी समझदारी से इस पूरे आंदोलन को हैंडल किया, there was not a single case of लाठी चार्ज, there was not a single case of firing, मतलब जो टियर गैस छोड़ा जाता है, देर इज नॉट अ सिंगल केस ऑफ दैट, कोई ब्रुटैलिटी की खबर नहीं आई। इनफैक्ट महाराष्ट्र वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सबसे पहले केसेस वापस लेने में भी महाराष्ट्र था। कोई भी ऐसी धाराएं FIR में नहीं लगाई गई जिसके वजह से आप उनको क्रिमिनलाइज करें या स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े। ये भी तो रियलिटी है, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो तारीफ हो रही है।
1: देखिए
0: अब इसमें आप वो तारीफ नहीं लेना चाहते, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता।
1: देखिए अगर वो सही मन से तारीफ करते ना तो मैं खुशी खुशी तारीफ ले भी लेता, उनको थैंक यू भी बोल देता, पर उस तारीफ के पीछे का डिजाइन मुझे मालूम है,
0: देयर इज अ ट्रैप,
1: इसलिए ऐसी तारीफ ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नॉर्मली महाराष्ट्र में हमेशा हमारी ये पॉलिसी रही है कि जहां तक हो सके एंगेज करिए, और जब तक कानून व्यवस्था का एक्सट्रीम प्रयास मतलब को एक्सट्रीम हानि जब तक नहीं पहुंचती है तब तक हम बल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन कभी कभी ये होता है, आप देखिए जैसे दिल्ली में हुआ कि अगर ये लोग संसद चले जाते, सवाल वो नहीं होता है, कुछ लोग संसद चले जाएंगे तोड़फोड़ करेंगे, इससे देश की बदनामी होती है, इससे पुलिस फोर्स की बदनामी होती है, और दुनिया में यह संदेश जाता है कि ये देखिए कितनी वीक डेमोक्रेसी है, ये कितनी वीक कंट्री है कि जिसके संसद में लोग घुस जाते हैं और संसद के अंदर एक प्रकार से तोड़फोड़ हो जाती है, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है। देश की अल्टीमेटली एक जो हमारा डिटेरेंट होता है दुनिया में, एक मजबूत देश, ये उसके लिए इसकी हानि होती है। ये तो इसीलिए कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि जब कोई मानने को तैयार नहीं होता, लोग कानून हाथ में ले लेते हैं, जो संविधानिक व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को तोड़ देते हैं, तो बल का प्रयोग तो करना पड़ता है, पर बल का प्रयोग अंतिम होना चाहिए। और महाराष्ट्र में हम लोग बहुत संयम के साथ प्रयास ये करते हैं कि बल का प्रयोग कम से कम करना पड़े।
0: लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का भी एक काम होता है कि वो एंगेज करे, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ में एंगेज करे, जो महाराष्ट्र में हमने कई बार देखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भी अगर उसी तरीके का एंगेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ में या प्रोटेस्टर्स के साथ में होता तो हो सकता है कि जिस तरीके से उस प्रोटेस्ट ने बाद में रूप लिया उस तरीके से शायद चीजें नहीं होती?
1: देखिए एंगेज करे किसके साथ, ऐसा है
0: देयर इज नो बॉडी,
1: देयर इज एक प्रकार से वो फेसलेस था, और जो उसको चला रहे थे उनके भी कंट्रोल में लोग कहां थे उनके भी कंट्रोल में लोग नहीं थे। तो कई बार यह ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाता है कि जिसमें कोई लीडर नहीं है, जो लीडर क्लेम कर रहे हैं अपने आप को वो भी लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो बन गए लीडर लेकिन लोग उनके लीडरशिप के लिए नहीं आए, कोई किसी और कॉज के लिए आए, कोई जैसे आपने देखा जंतर मंतर पे जिनके इंटरव्यूज लोग ले रहे थे, तो कई लोग तो ऐसा था जिनसे नीट से भी लेन देन नहीं था, किसी चीज से लेन देन नहीं था, कोई अलग अलग अपने कॉज के लिए आए थे, कुछ लोग रील बनाने के लिए आए थे, कुछ लोग पॉडकास्ट करने के लिए आए थे। तो मुझे यह लगता है कि एंगेज करने के लिए भी आपको लोग चाहिए, किसके साथ। अब जब ये सारा वहां का माहौल हुआ, वहां लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद ये जो सारे एलिमेंट है जो अलग अलग प्रकार के ये चले गए, तब जो बचे हुए लोग हैं उनके साथ गवर्नमेंट ने एंगेज किया और एंगेज करके उसमें से हल निकाला।
0: नहीं लेकिन व्हाट इज द बिगेस्ट टेक अवे ऑफ दिस, बिकॉज मैंने चेंज ये जो नोटिस किया आप केस में कि आपने समय रैना से मुलाकात की, आपने एक मीटिंग बुलाई थी मुंबई पुलिस और जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है जिनके खिलाफ एक वक्त पे मुंबई पुलिस ने ही FIR दर्ज किए थे फॉर यूजिंग ऑब्सीन लैंग्वेजेस और जो भी उनके सेक्शन थे उसमें। You tried to engage with them. क्या आपको लगता है कि ये engagement की कमी हो रही है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में, कि उनकी जो ये Gen Z generation है उनके साथ में उनके लैंग्वेज में engagement शायद नहीं हो पा रहा है जो आपको लगता है कि जरूरी है, उनके साथ बातचीत जरूरी है, उनका तजुर्बा अलग है, उनका सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग है, उनके साथ में ये जरूरी है ऐसा आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि engagement बहुत जरूरी है, कम हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अल्टीमेटली मैं आपको एक ही उदाहरण बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको याद होगा एक इंस्टा पोस्ट डाला, एक इंस्टा पोस्ट, और उसने सारे अल्गोरिदम तोड़ दिए।
0: आप इंस्टा पे हैं?
1: हाँ
0: आप रील्स डालते हैं?
1: हाँ मैं डालता हूँ, मैं सारे प्लेटफॉर्म पर हूँ, ऑल प्लेटफॉर्म्स।
0: यू ऑल्सो डू द वीडियोज एंड ऑल?
1: या आई डू, मैं करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये होता है, आपको रियलाइज होता है कि भाई एक नई जनरेशन है, इस नई जनरेशन के साथ उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, उनको हमको समझना पड़ेगा और उनको एंगेज करना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं, हम करेंगे, कोई सवाल नहीं है। और देखिए, जो लोग जंतर मंतर पे थे केवल वो जेंजी है ऐसा हम समझेंगे तो ये गलत बात है। देखिए, ये जो बहुत बड़ी जनरेशन है, इस जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कई लोगों के साथ हम लगातार एंगेज करते हैं, कई कार्यक्रमों में मैं जाता हूं, उनके साथ एंगेज करता हूं। और मैं ये मानता हूं, देखिए, ये पहली जनरेशन है कि जो 100% टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई है। मिलेनियल्स भी पूरे टेक्नोलॉजी के साथ पैदा नहीं हुए, वो एक प्रकार से मतलब उस बीच के इसमें पैदा हुए हैं। लेकिन जेन जी एक ऐसी जनरेशन है कि जो 100% टेक्नोलॉजी के साथ, स्मार्टफोन्स के साथ ये पैदा हुई है, इसलिए इसका एक्सपोजर अलग है। किसी भी इसके पहले की जनरेशन से इनका ग्लोबल एक्सपोजर अलग है, इनको जो चीज़ें परोसी जाती है वो चीज़ें भी अलग है, मतलब उसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें, कुछ बुरी भी चीज़ें। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इनके विचार की जो प्रक्रिया है, क्षमता है, ये थोड़ी अलग है, तो उस हिसाब से एंगेज करना पड़ेगा। मुझे लगता है हम कर रहे करेंगे
0: नहीं, क्योंकि कारण इसका ये हुआ ना कि ये इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं है। आप एक आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद एक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इज इनविंसिबल, बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इस तरीके से लग रहा था। और अचानक देश में माहौल बदल गया, अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट होने लग गए, सवाल खड़े होने लग गए, SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया, न्यूज़पेपर के रिपोर्ट में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके पर सवाल उठे, ये सारी चीजें देखते हुए आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, क्योंकि 2029 में हम चुनाव का सामना करेंगे, पार्टी को भी अपने आप में कुछ बदल करना पड़ेगा? आप 230 विधायकों के साथ इस स्टेट में राज कर रहे हैं, अगर आपके अलायंस के पूरे विधायक देखे तो, लेकिन आज फिर भी अपोजिशन आपको सड़क पे नजर आ रहा है एक तरीके से, अलग अलग फॉर्म में, कोई रवैया चेंज करना पड़ेगा पार्टी को?
1: देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो लग रहा है कि भाई बहुत माहौल बदल रहा है वगैरह, इसमें कोई मैं नहीं मानता कि तथ्य है, क्योंकि जैसे आज ही त्रिपुरा के चुनाव का रिजल्ट आया, वहां पर लोकल बॉडी का भी रिजल्ट आया, और लोकल बॉडी में टोटल स्वीप किया है बीजेपी ने, टोटल त्रिपुरा में। और सबसे बड़ी बात यह है, ये इसलिए मैं भी बताना चाहता हूं, त्रिपुरा के लोकल बॉडी इलेक्शंस EVM पर नहीं हुए, बैलेट पर हुए, और बैलेट के चुनाव में बीजेपी ने आज ही त्रिपुरा में पूरा स्वीप किया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको ये लोग जो दिख रहे हैं, जो लोग मुखरता के साथ बोल रहे हैं, इसको अगर आप पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन समझेंगे तब गलती करेंगे। देश में बड़ा मास ऐसा है जो बोलता नहीं है, जो कुछ ना कुछ कर रहा है, और जो बीजेपी के साथ है, और वही बीजेपी की ताकत है, और हम उसके साथ एंगेज कर रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी पार्टी स्टैटिक नहीं हो सकती है, आपको अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। और इसमें तो सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी हमें हमेशा ये कहते हैं कि आपको पिछला चुनाव जिन तरीकों ने जीता कर दिया, वो तरीके अगले चुनाव में काम नहीं आते, आपको संवाद के माध्यम बदलने पड़ते हैं, आपको विषय बदलने पड़ते हैं, आपको नए तरीके से रीच आउट होना पड़ता है। ये हमेशा प्रधानमंत्री जी का कहना होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत डायनामिक होती है, जनरेशन बदलती है, उनके साथ आपको एंगेज करना पड़ता है, तो आपके तरीकों को भी बदलना पड़ता है। जैसे आज अगर हम विचार करें तो पिछले, समझ लीजिए कि 2024 का चुनाव, 24 के चुनाव में सबसे बड़ा मतलब जो कम्युनिकेशन हुआ जो भी, ये YouTube था, और यूट्यूबर्स थे कि जिन्होंने नरेटिव को मेक ब्रेक शेप किया,
0: जो मेनस्ट्रीम में नहीं,
1: हाँ मेनस्ट्रीम में जो। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज 40% ट्रैफिक इंस्टाग्राम पर है। अब लोग लंबी चीजें देखना नहीं चाहते, अब यू हैव टू कम्युनिकेट इन 45 सेकेंड्स, आपको एक मिनट में कम्युनिकेट करना है, क्योंकि सारा कंजम्पशन अब अगर इंस्टाग्राम पे आ रहा है, और आप एक्स पोस्ट करते रहेंगे, आप फेसबुक पे, मतलब वो भी अच्छे माध्यम है, 15% 20% उनका भी शेयर है, बट इफ यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम, यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, If you are not communicating on Instagram, you are not communicating with the new generation. इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा उस समय के माध्यम क्या है ये हमको समझना पड़ता है और उसके हिसाब से अपने आपको बदलना भी पड़ता है।
0: आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे नेताओं को कि लंबे भाषण मत दीजिएगा। अभी शॉर्ट्स का जमाना आ गया, छोटे छोटे में आपको जो बोलना है वो छोटे में बोलिए, लंबे लंबे भाषण नहीं चलेंगे।
1: कम्युनिकेशन अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है और जो कम्युनिकेटर जो होता है ना, कम शब्दों में राइट बात जो बता पाए वो कम्युनिकेटर होता है और किसी भी नेता के लिए कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है।
0: एक और एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि मैंने शुरुआत उससे की थी इसी के लिए कि आपका थर्ड टर्म चल रहा है, यानी बीच का टर्म तो भूल जाते हैं हम, लेकिन ठीक है, दो टर्म आपके हो चुके हैं। नॉर्मली तीसरे टर्म की तरफ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री जाता है बीजेपी में तो रास्ता उसका थोड़ा सा ट्रैजेक्टरी रास्ता थोड़ा बदल जाता है। हमने सुना है कि कई लोग यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं कि जो इच्छा रखते हैं, आप अच्छे मन से कहिए कुछ अलग मन से कहिए, कि उनको लगता है कि आप ऊपर जाएं, दिल्ली की तरफ आप चले जाएं, और फिर हम खबर सुनते हैं कि हरदीप पुरी उनका टिकट काट दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ये सब हो रहा है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, फलानी बातचीत चल रही है, तो फिर आपका नाम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर आना शुरू हो जाता है। ये क्या है, मतलब आप एक्चुअली क्या है, मतलब आप कई बार क्लैरिफाई कर चुके हैं लेकिन बातें ऐसी नहीं होती है।
1: देखिए
0: मैं तो धुआं है, तो आग है तो धुआं है,
1: आग रहती है धुआं रहता है, पॉलिटिक्स में सब चलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा रास्ता अभी बहुत साफ है। मेरा रास्ता गढ़चिरौली से शुरू होता है और गढ़ हिंगलस तक जाता है, ये रास्ता बिल्कुल पक्का है, इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरा रास्ता, मैं दिल्ली ये प्रवासी के रूप में जाता हूँ, निवासी के रूप में नहीं, और मैं वैसे ही रहूँगा। मेरी पार्टी ये चाहती है कि मैं महाराष्ट्र में काम करूँ, मेरे नेता ये चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र में काम करूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं महाराष्ट्र में ही काम करने वाला हूं।
0: नहीं ऐसा क्यों, लेकिन अगर दिल्ली में जाने में बुराई क्या है?
1: बिल्कुल बुराई नहीं है।
0: बुराई क्या है, मतलब अगर कोई
1: भाई
0: बुराई, प्रधानमंत्री भी तो दिल्ली गए।
1: ना, बुराई नहीं है, पर जबरदस्ती क्यों भेजना चाहते हो? समय आएगा तो वहां भी जाएंगे, ये तो बड़ी अजीब जबरदस्ती है। नहीं अभी जाओ आज जाओ कल जाओ, अभी आपका टिकट बुक कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हर चीज का अपना समय होता है, अभी मेरा समय महाराष्ट्र में चल रहा है, बहुत चीजें कर रहा हूं, बहुत चीजें करनी है। मेरी पार्टी की बहुत अपेक्षा है मेरे से है, मेरे नेताओं की बहुत अपेक्षा है, उनको पूरा करूंगा। उसके बाद जब नेता कहेंगे दिल्ली आ जाओ तो दिल्ली आऊंगा। मैं तो हमेशा कहता हूं दिल्ली बुलाएंगे दिल्ली जाऊंगा, और कह दिया नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं नागपुर चले जाओ तो नागपुर अपने घर धर्मपेट।
0: सो देयर इज नो कंपल्शन कि आपको दिल्ली जाना ही है, आपने एक ट्रैजेक्टरी बना के रखी है कि आपने आप
1: बिल्कुल कोई
0: आगे
1: कोई
0: हम उस तरफ जाएंगे,
1: कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी।
0: और ये कंपटीशन दिखाई देता है कि आप प्रधानमंत्री को मिलने जाते हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री को मिलते हैं, आप गृहमंत्री के पास जाके एसोसिएशन की मांग करते हैं कि भाई हमें पैसे ड्राउट के लिए पैसे दीजिए। उस दिन हमने देखा एकनाथ शिंदे उनकी तरफ से भी आए कि हमने प्रधानमंत्री से मांग की। ये कॉम्पिटिशन चल रहा है डेप्यूटी सीएम सीएम फॉर्मर डेप्यूटी सीएम नाउ सीएम वैसा।
1: नहीं, मेरा अपना मानना यह है कि आप एकनाथ शिंदे जी को महज डिप्टी सीएम के रूप में देखते हैं, वो केवल डिप्टी सीएम नहीं है, हमारी जो एक साथी पार्टी है कोएलिशन पार्टनर है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और ये एक ऐसा कोएलिशन पार्टनर है कि जो हमारे पहले तीन कोएलिशन पार्टनर में आता है। इसलिए भले ही यहां पर वो डिप्टी सीएम के रूप में हो, पर देश की राजनीति में हमारे कोएलिशन पार्टनर के रूप में वो होते, इसलिए प्रधानमंत्री जी से भी उनको मिलना पड़ता है, एनडीए की बैठकों में भी उनको जाना पड़ता है, और प्रधानमंत्री से वो मिलते हैं, और अगर वो प्रधानमंत्री जी के पास इस एक्सट्रीम ड्राउट की सिचुएशन में जाएंगे
0: तो वो शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर जाते हैं,
1: शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर वो मिलते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की भी कोई चीज है तो मुझसे बात करके ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बिना बताए वो जाते हैं।
0: आप पूरे कंट्रोल में है, मतलब कोई ऐसे इंटरनल कंपटीशन की?
1: एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल पूरा मेरा है, मैं व्यक्तियों को कंट्रोल नहीं करता, इसलिए व्यक्तियों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं करता भी नहीं हूं, पर एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा मेरा कंट्रोल।
0: बट एज अ चीफ मिनिस्टर मंत्रियों पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए, उसमें क्या है? मतलब अगर चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मंत्रियों को भी कंट्रोल करना है?
1: ना, मंत्रियों को कंट्रोल करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल, व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल था ये सभी को मालूम है क्या है।
0: चलिए हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते मुझे आपसे एक पूछना है, क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद एक्चुअली आपका ट्विटर बायो देखा और उसमें आपने लिखा है कि राम सेवक, कार सेवक एंड महाराष्ट्र सेवक, अपने आप को आप डिस्क्राइब करते हैं।
1: इसका मतलब आपने तीन चार सालों से देखा नहीं है?
0: हाँ, मैंने बहुत दिन से
1: तीन चार सालों से ये
0: आज मैंने अचानक देखा कि
1: तीन चार सालों से यही है
0: ये टर्म। ये आपका ये कैसा है, मतलब उसका लिंक कैसे होगा, मतलब पहले राम सेवक, कार सेवक और फिर महाराष्ट्र सेवक, या सब एक साथ कैसे देखे हम?
1: देखिए, आप कैसा भी कह लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी ऐसा पिया, ऐसा पिया, ऐसा पिया, ऊपर से पिया, वो एक ही बात है। मैं महाराष्ट्र सेवक हूं ही, मैं राम सेवक हुई और मैं कार सेवक हूं ही।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, एज यूजुअल।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: So many payment apps, but which one is safe?
5: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
6: It's the Mahi way.
7: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले
8: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड ऑनेस्ट प्राइसिंग कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
9: And Senco supports environment care for women empowerment.
10: एक परिवार अटूट भरोसा
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम AU
12: सोच बदलो और बैंक भी
13: आप देख रहे क्या कर रहे हैं उनको
14: A political storm over Gyanesh Kumar's resignation.
15: All MPs of India block are of just one view. That Ganesh Kumar must step down.
14: India Today tracks the opposition's growing demand from the ground.
16: Rahul Gandhi has gotten off the bus.
17: All senior leaders are yet to be detained.
16: And there is high drama unfolding.
18: This is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: पहले एलन मस्क को समझ लेना चाहिए कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहां कुछ व्यवस्था से, नियम कानून कायदे से सभी निर्णय होंगे, जिनको वो इशारे से बोल रहे कि ओलिगार्क वगैरह, वो लोग भी स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जियो हो, एयरटेल हो, वो भी स्टारलिंक के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। बट सबसे मजेदार प्रतिक्रिया तो राहुल गांधी जी का है। वो तो हम सबको कह रहे थे कि एलन मस्क के सामने, ट्रंप के सामने आप तो सरेंडर हो जाते हो, आप सरेंडर वाली पार्टी है, ये है वो है बोल रहे थे। अब क्या हो गया कि इतना सरेंडर हो रहे?
1: अब उन्होंने पहचाना है, बहुत देर से पहचाना, दिक्कत यही है ना, देर से पहचाना उन्होंने। अब एलन मस्क तो एलन मस्क है, एलन मस्क की उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, तो एलन मस्क तो एलन मस्क ही है ना। देखिए, उपभोक्ताओं को फायदा होगा, सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी को फायदा हो, बस इतनी सी तो बात है।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले।
1: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
2: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
3: एक परिवार अटूट भरोसा।
4: आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं उनको?
5: A political storm over Gyanesh Kumar's resignation.
6: All MPs of India Bloc are of just one view that Gyanesh Kumar must step down.
5: India Today tracks the opposition's growing demand from the ground.
7: Rahul Gandhi has gotten off the bus.
6: All senior leaders are yet to be detained.
7: And there is high drama unfolding.
8: This is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.

राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपी पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।

0: आपका थर्ड टर्म है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने 2650 दिन पूरे किए हुए हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की अगर सूची निकालें तो उसमें आपका यह टर्म तीन नंबर पे आता है, यानी आप दो एक नंबर पे भी जा सकते हैं आज की स्थिति में। तो शुरुआत तो मैं इसी से करना चाहूंगा कि कोई बड़ा चैलेंज आज की स्थिति में, जब आप लग रहे हैं कि आप सेटल्ड है महाराष्ट्र में एज अ चीफ मिनिस्टर, कोई बड़ा चैलेंज आपके सामने आज की स्थिति में?
1: देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि चैलेंजेस हमेशा रहते ही है। हम एक विकसनशील अर्थव्यवस्था है और विकसनशील अर्थव्यवस्था में हमेशा कोई ना कोई चैलेंज आपके सामने होता है। लेकिन अगर आप इमीडिएट चैलेंज की बात करेंगे तो इस वर्ष एल नीनो के कारण जिस प्रकार का सूखा और अकाल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज है। करीब 75% महाराष्ट्र में जो हमारा क्रॉप है वो समाप्त हो गया है, ह्यूज क्रॉप लॉस। पीने के पानी की भी कुछ दिक्कत आगे आएगी, मवेशियों के लिए चारे की भी दिक्कत आएगी। तो अभी उसी का प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि वही सबसे बड़ा चैलेंज मैं मानता हूँ आज।
0: सर, दूसरी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आप जब भी सत्ता में आ जाते हैं अचानक लोग सड़क पे दिखना शुरू हो जाता है अलग अलग इलाकों में। जैसे पहले टर्म में हमने देखा कि देर वर लार्ज नंबर ऑफ मराठा प्रोटेस्ट आस्किंग फॉर द मराठा कोटा, फिर उसके बाद आपने बिल लाया और मराठा आरक्षण आपने लागू किया। इस बार आपका टर्म शुरू हो गया और पूरे देश भर में एक माहौल बना है कि जिसके वजह से अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं। ट्राइबल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एमपीएससी के स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुंबई में हमने देखा कि अलग अलग मांगों को लेकर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, इससे पहले का प्रोटेस्ट हुआ। ये सारा जो माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? इज इट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इज इट बिकॉज ऑफ देयर इज अ डिस्ट्रेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए सड़क पर नजर?
1: देखिए, मैं इसको दो कैटेगरी में विभाजित करना चाहता हूं। कुछ प्रोटेस्ट जेन्युइन है, लोगों की समस्याएं है, कभी किसानों की होती है, कभी आदिवासियों की होती है, कभी स्टूडेंट्स की होती है, और कुछ प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड है। ऐसा है कि अगर हम लोग कुल मिलाकर ये प्रोटेस्ट का डिजाइन देखें, जैसे मसलन सीजेपी की बात अगर हम करें, तो ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट एक हमारे देश में एक जो एक वीक अपोजिशन है, इस वीक अपोजिशन ने जो वैक्यूम तैयार किया है उस वैक्यूम को भरने का प्रयास ये सीजेपी जैसे लोग कर रहे हैं।
0: ये एनालिसिस में पहली बार सुन रहा हूं।
1: बिल्कुल,
0: आप कह रहे हैं कि अपोजिशन वीक है इसके वजह से सीजेपी प्रोटेस्ट?
1: मैं बिल्कुल बता रहा हूं। एक डिजाइन है और ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट इस विचारों का डिजाइन है कि जिसमें ये जो बिल्कुल अराजकतावादी ताकतें जो होती है एनार्किस्ट, ये एनार्किस्ट फोर्सेस ये अलग अलग प्रकार से रीग्रुप होते हैं अलग अलग प्रकार से, और उसका एक आविष्कार ये सीजेपी के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। देखिए, ये सारे लोग जो है ये आइडियोलॉजी की लड़ाई हार चुके हैं। अब ये जानते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी पे लोग साथ में नहीं आने वाले। अब ये इश्यूज की लड़ाई पर आए, और इश्यूज की लड़ाई ये कभी भी कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी में आप लड़ी सकते हैं, क्योंकि कभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में ग्लास पूरा भरा नहीं होता है। तो सरकार आधा भरा हुआ ग्लास दिखाती है और इश्यूज के ऊपर आप आधा खाली ग्लास दिखा सकते हो। इस प्रकार की लड़ाई है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि इनका डिजाइन देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सीजेपी हो, ये सारे के सारे लोग संविधान दिखा दिखा कर ये सारे प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट क्या है, तो संविधान ने तैयार की हुई सारी संस्थाएं ये खराब है। आरबीआई भी खराब है, इलेक्शन कमीशन भी खराब है, सुप्रीम कोर्ट भी खराब है, सीएजी भी खराब है, ये सारी संस्थाएं खराब है। अब देखिए, ये डिजाइन ये है कि धीरे धीरे इन सारी संस्थाओं को डिमोनाइज करना, इनको डिमोनाइज करने के बाद ये बोलना कि देखिए संविधान ने तैयार की हुई संस्थाएं आपको न्याय नहीं दे सकती, और फिर धीरे धीरे ये लोग इस बात को प्रतिपादित करेंगे कि ये संविधान आपको न्याय नहीं दे सकता। संविधान दिखा दिखा कर ही संविधान के खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है, ये लोग एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट व्यवस्था को लाना चाहते, एक ऐसी व्यवस्था की जो, और ये मैं नहीं कहता, आप देखिए जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में जो एनआरकी की बात की थी, अगर आप उसको पढ़ेंगे बिल्कुल सेम उसी डिजाइन से काम चल रहा है, उसी डिजाइन से, मतलब कोई भी लॉजिकल बात नहीं कहना, और किसी ने लॉजिकल बात कही तो उसको एक प्रकार से ट्रोल कर देना, ये बिल्कुल इनका एक डिजाइन है कि जिस डिजाइन के तहत इस देश में एनआरकी लाकर एनार्किस्ट फोर्सेस यहां पर अल्ट्रा लेफ्टिस्ट व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, और अब इसमें सीजेपी और कांग्रेस में होड़ लगी है,
0: देयर इज अ कंपटीशन
1: कंपटीशन।
0: लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि पिछली बार जब सीजेपी का प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ था, द गवर्नमेंट एंगेज्ड विद देम, द गवर्नमेंट ने वहां पर दो बड़े सीनियर मंत्री वहां पर भेजे, उनके साथ में बात की, अगर वो एनार्किस्ट फोर्सेस है तो उनके साथ में सरकार ने बातचीत क्यों शुरू की, नंबर एक। नंबर दो, आप कह रहे हैं कि उनकी डिमांड है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन क्या पेपर लीक के वजह से जो जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी इस्तीफे की मांग करना, आपने भी तो कई बार आंदोलन किया होगा, महाराष्ट्र में मैंने आपको कई बार मंत्रियों का इस्तीफा मांगते हुए आंदोलन करते हुए देखा हुआ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आंदोलन करते हुए देखा हुआ है, तो पेपर लीक को लेकर मंत्री का इस्तीफा मांगना ये लॉजिकल कैसे नहीं है, किस तरीके से आप उसको रखें?
1: देखिए पहली बात तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो एंगेज किया ऐसा आप कह रहे हैं बिल्कुल करना ही चाहिए, अगर आप डेमोक्रेसी को मानते हैं तो आपको सबके साथ बातचीत करनी पड़ती है, हम लोगों ने तो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो नक्सलवादी थे उनके साथ भी बातचीत की ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में करनी पड़ती है आपको, डेमोक्रेसी में बातचीत से ही हल निकलता है और हल निकालने का प्रयास करना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजी हमको मंजूर है या वो जो करते हैं वो मंजूर है या जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को मार दिया ये हमको ठीक था इसलिए हमने उनसे बात की, ऐसा नहीं होता है, फिर भी प्रयास ये करना पड़ता है कि आप एंगेज विद द पीपल, ट्राई टू परस्यूएट देम, ट्राई टू कन्विंस देम, और नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो संविधान ने आपको जिस प्रकार से जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप देखिए नीट का पेपर लीक हुआ, गलत हुआ, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, उसके बाद गवर्नमेंट ने नीट की परीक्षा ली, ट्रांसपेरेंट परीक्षा हुई, परीक्षा का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद आप जंतर मंतर पे जमा होते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमा हुई है, आपको इस्तीफा मांगने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन वहां पर हो रहा था, जिस प्रकार की भद्दी गालियां प्रधानमंत्री जी के निकाली जा रही थी और जिस प्रकार के वहां पर वाकयात थे, अब तो सामने आ रहा है 2000 तो ऐसे लोग थे वहां पर जो हिस्ट्री शीटर थे जिनके खिलाफ बहुत जघन्य इस प्रकार के अपराध है, तो ये जो सारा देखिए इसको अराजकता कहते हैं, दिस इज एनार्की, इस्तीफा मांगना इज नॉट एनार्की, आप उपोषण करें यह एनार्की नहीं है, लेकिन इस प्रकार के लोगों को जमा करके और जिस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा था, जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार हो रहा था, ये एनार्की।
0: लेकिन फिर भी जो आंदोलनकारी उन्होंने तो आपकी तारीफ की, मतलब जितना मैंने सुना है उसमें तो हमने देखा कि वो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, उन्होंने हम पर लाठीचार्ज नहीं किया, उन्होंने हमें आंदोलन करने दिया, जबकि दिल्ली में हमने देखा कि उसको लेकर काफी गुस्सा था कि लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी रही, आप मतलब आपका नजरिया थोड़ा अलग है उसको लेकर, या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से दिल्ली का आंदोलन हैंडल किया जा सकता था?
1: ऐसा है कि अगर मेरी आपके मालिक को गाली देने की इच्छा है तो मैं कहूंगा साहिल अच्छा आदमी है, मालिक खराब है, प्रॉब्लम मालिक का है, साहिल बहुत बढ़िया आदमी है, साहिल जैसा आदमी नहीं है, ये बहुत कॉमन है, इससे साहिल ने खुश नहीं होना चाहिए, साहिल को समझना नहीं होना ही नहीं चाहिए, साहिल को ये समझना, अगर साहिल को ये समझा नहीं है कि भाई ये किस लिए बोल रहे हैं कि साहिल बहुत अच्छा आदमी है तो फिर तो मतलब सॉरी टू से, पर इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो नहीं सकती ना साहिल।
0: चलिए ठीक है आप, लेकिन मैं ये तो पूछ सकता हूं ना कि जो दिखता है वो तो हम पूछ ही सकते हैं ना, कि ये बात भी तो सही है कि आपकी पुलिस ने बड़ी समझदारी से इस पूरे आंदोलन को हैंडल किया, देयर वाज नॉट अ सिंगल केस ऑफ लाठी चार्ज, देयर वाज नॉट अ सिंगल केस ऑफ फायरिंग, मतलब जो टियर गैस छोड़ा जाता है. देयर इज नो नॉट अ सिंगल केस ऑफ दैट. कोई ब्रुटैलिटी की खबर नहीं आई. इनफैक्ट महाराष्ट्र वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सबसे पहले केसेस वापस लेने में भी महाराष्ट्र था. कोई भी ऐसी धाराएं एफआईआर में नहीं लगाई गई जिसके वजह से आप उनको क्रिमिनलाइज करें या स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े. ये भी तो रियलिटी है. इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो तारीफ हो रही
1: है. देखिए
0: अब इसमें आप वो तारीफ नहीं लेना चाहते, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता.
1: देखिए अगर वो सही मन से तारीफ करते ना तो मैं खुशी खुशी तारीफ ले भी लेता, उनको थैंक यू भी बोल देता. पर उस तारीफ के पीछे का डिजाइन मुझे मालूम है,
0: देयर इज अ ट्रैप.
1: इसलिए ऐसी तारीफ ठीक है. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नॉर्मली महाराष्ट्र में हमेशा हमारी ये पॉलिसी रही है कि जहां तक हो सके एंगेज करिए, और जब तक कानून व्यवस्था का एक्सट्रीम प्रयास मतलब को एक्सट्रीम हानि जब तक नहीं पहुंचती है तब तक हम बल का प्रयोग नहीं करते. लेकिन कभी कभी ये होता है, आप देखिए जैसे दिल्ली में हुआ कि अगर ये लोग संसद चले जाते, सवाल वो नहीं होता है. कुछ लोग संसद चले जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, इससे देश की बदनामी होती है, इससे पुलिस फोर्स की बदनामी होती है, और दुनिया में यह संदेश आ जाता है कि ये देखिए कितनी वीक डेमोक्रेसी है, ये कितनी वीक कंट्री है कि जिसके संसद में लोग घुस जाते हैं और संसद के अंदर एक प्रकार से तोड़फोड़ हो जाती है. तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है. देश की अल्टीमेटली एक जो हमारा डिटेरेंट होता है दुनिया में, एक मजबूत देश, ये उसके लिए इसकी हानि होती है. ये तो इसीलिए कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि जब कोई मानने को तैयार नहीं होता, लोग कानून हाथ में ले लेते हैं, जो संविधानिक व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को तोड़ देते हैं, तो बल का प्रयोग तो करना पड़ता है. पर बल का प्रयोग अंतिम होना चाहिए. और महाराष्ट्र में हम लोग बहुत संयम के साथ प्रयास ये करते हैं कि बल का प्रयोग कम से कम करना पड़े.
0: लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का भी एक काम होता है कि वो एंगेज करे, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ में एंगेज करे, जो महाराष्ट्र में हमने कई बार देखा हुआ है. क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भी अगर उसी तरीके का एंगेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ में या प्रोटेस्टर्स के साथ में होता तो हो सकता है कि जिस तरीके से उस प्रोटेस्ट ने बाद में रूप लिया उस तरीके से शायद चीजें नहीं होती?
1: देखिए एंगेज करे किसके साथ, ऐसा है
0: देयर इज नो बॉडी,
1: देयर इज एक प्रकार से वो फेसलेस था और जो उसको चला रहे थे उनके भी कंट्रोल में लोग कहां थे उनके भी कंट्रोल में लोग नहीं थे. तो कई बार ये ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाता है कि जिसमें कोई लीडर नहीं है, जो लीडर क्लेम कर रहे हैं अपने आप को वो भी लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. वो बन गए लीडर लेकिन लोग उनके लीडरशिप के लिए नहीं आए, कोई किसी और कॉज के लिए आए, कोई किसी, जैसे आपने देखा जंतर मंतर पे जिनके इंटरव्यूज लोग ले रहे थे तो कई लोग तो ऐसा था जिनसे नीट से भी लेन देन नहीं था, किसी चीज से लेन देन नहीं था, कोई अलग अलग अपने कॉज के लिए आए थे, कुछ लोग रील बनाने के लिए आए थे, कुछ लोग पॉडकास्ट करने के लिए आए थे. तो मुझे यह लगता है कि एंगेज करने के लिए भी आपको लोग चाहिए. किसके साथ? अब जब ये सारा वहां का माहौल हुआ, वहां लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद ये जो सारे एलिमेंट है जो अलग अलग प्रकार के ये चले गए, तब जो बचे हुए लोग हैं उनके साथ गवर्नमेंट ने एंगेज किया और एंगेज करके उसमें से हल निकाला.
0: नहीं लेकिन व्हाट इज द बिगेस्ट टेक अवे ऑफ दिस, बिकॉज मैंने चेंज ये जो नोटिस किया आप केस में कि आपने समय रैना से मुलाकात की, आपने एक मीटिंग बुलाई थी मुंबई पुलिस और जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है जिनके खिलाफ एक वक्त पे मुंबई पुलिस ने ही FIR दर्ज किए थे फॉर यूजिंग ऑब्सीन लैंग्वेजेस और जो भी उनके सेक्शंस थे उसमें. You try to engage with them. क्या आपको लगता है कि ये engagement की कमी हो रही है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में, कि उनकी जो ये Gen Z generation है उनके साथ में उनके language में engagement शायद नहीं हो पा रहा है जो आपको लगता है कि जरूरी है, उनके साथ बातचीत जरूरी है, उनका तजुर्बा अलग है, उनका situation को देखने का नजरिया अलग है, उनके साथ में ये जरूरी है ऐसा आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि engagement बहुत जरूरी है, कम हो रहा है ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ ये जरूर है कि अल्टीमेटली मैं आपको एक ही उदाहरण बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, एक इंस्टा पोस्ट डाला और उसने सारे अल्गोरिदम तोड़ दिए.
0: आप इंस्टा पे हैं?
1: हाँ.
0: आप रील्स डालते हैं?
1: हाँ मैं डालता हूँ, मैं सारे प्लेटफॉर्म पर हूँ, ऑल प्लेटफॉर्म्स.
0: यू ऑल्सो डू द वीडियोज एंड ऑल?
1: या आई डू, मैं करता हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये होता है, आपको रियलाइज होता है कि भाई एक नई जनरेशन है, इस नई जनरेशन के साथ उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, उनको हमको समझना पड़ेगा और उनको एंगेज करना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं, हम करेंगे, कोई सवाल नहीं है। और देखिए, जो लोग जंतर मंतर पे थे केवल वो जेंजी है ऐसा हम समझेंगे तो ये गलत बात है। देखिए, ये जो बहुत बड़ी जनरेशन है, इस जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कई लोगों के साथ हम लगातार एंगेज करते हैं, कई कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ, उनके साथ एंगेज करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ, देखिए ये पहली जनरेशन है कि जो 100% टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई है। मिलेनियल्स भी पूरे टेक्नोलॉजी के साथ पैदा नहीं हुए, वो एक प्रकार से मतलब उस बीच के इसमें पैदा हुए हैं। लेकिन जेन जी एक ऐसी जनरेशन है कि जो 100% टेक्नोलॉजी के साथ, स्मार्टफोन्स के साथ ये पैदा हुई है, इसलिए इसका एक्सपोजर अलग है। किसी भी इसके पहले की जनरेशन से इनका ग्लोबल एक्सपोजर अलग है, इनको जो चीज़ें परोसी जाती है वो चीज़ें भी अलग है, मतलब उसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें, कुछ बुरी भी चीज़ें। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इनकी विचार की जो प्रक्रिया है, क्षमता है, ये थोड़ी अलग है, तो उस हिसाब से एंगेज करना पड़ेगा। मुझे लगता है हम करेंगे
0: नहीं, क्योंकि कारण इसका ये हुआ ना कि ये इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं है। आप एक आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद एक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इज इनविंसिबल, बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इस तरीके से लग रहा था। और अचानक देश में माहौल बदल गया, अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट होने लग गए, सवाल खड़े होने लग गए, SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया, न्यूज़पेपर के रिपोर्ट में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके पर सवाल उठे, ये सारी चीजें देखते हुए आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, क्योंकि 2029 में हम चुनाव का सामना करेंगे, पार्टी को भी अपने आप में कुछ बदल करना पड़ेगा। आप 230 विधायकों के साथ इस स्टेट में राज कर रहे हैं, अगर आपके अलायंस के पूरे विधायक देखे तो, लेकिन आज फिर भी अपोजिशन आपको सड़क पे नजर आ रहा है, एक तरीके से अलग अलग फॉर्म में, कोई रवैया चेंज करना पड़ेगा पार्टी को।
1: देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो लग रहा है कि भाई बहुत माहौल बदल रहा है वगैरह, इसमें कोई मैं नहीं मानता कि तथ्य है, क्योंकि जैसे आज ही त्रिपुरा के चुनाव का रिजल्ट आया,
0: बाय इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं,
1: नहीं बाय इलेक्शन नहीं, वहां पर लोकल बॉडी का भी रिजल्ट आया, और लोकल बॉडी में टोटल स्वीप किया है बीजेपी ने, टोटल त्रिपुरा में। और सबसे बड़ी बात यह है, ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, त्रिपुरा के लोकल बॉडी इलेक्शंस EVM पर नहीं हुए, बैलेट पर हुए, और बैलेट के चुनाव में बीजेपी ने आज ही त्रिपुरा में पूरा स्वीप किया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये लोग जो दिख रहे हैं, जो लोग मुखरता के साथ बोल रहे हैं, इसको अगर आप पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन समझेंगे तो आप गलती करेंगे। देश में बड़ा मास ऐसा है जो बोलता नहीं है, जो कुछ ना कुछ कर रहा है, और जो बीजेपी के साथ है, और वही बीजेपी की ताकत है, और हम उसके साथ एंगेज कर रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी पार्टी स्टैटिक नहीं हो सकती है, आपको अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। और इसमें तो सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी हमें हमेशा ये कहते हैं कि आपको पिछला चुनाव जिन तरीकों ने जीता कर दिया, वो तरीके अगले चुनाव में काम नहीं आते, आपको संवाद के माध्यम बदलने पड़ते हैं, आपको विषय बदलने पड़ते हैं, आपको नए तरीके से रीच आउट होना पड़ता है। ये हमेशा प्रधानमंत्री जी का कहना होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत डायनामिक होती है, जनरेशंस बदलती है, उनके साथ आपको एंगेज करना पड़ता है, तो आपके तरीकों को भी बदलना पड़ता है। जैसे आज अगर हम विचार करें तो पिछले, समझ लीजिए कि 2024 का चुनाव, 24 के चुनाव में सबसे बड़ा मतलब जो कम्युनिकेशन हुआ जो भी, ये यूट्यूब था और यूट्यूबर से, कि जिन्होंने नरेटिव को मेक ब्रेक शेप किया,
0: जो मेनस्ट्रीम में नहीं,
1: हाँ मेनस्ट्रीम में जो, लेकिन आज अगर आप देखें तो आज 40% ट्रैफिक इंस्टाग्राम पर है। अब लोग लंबी चीजें देखना नहीं चाहते, अब यू हैव टू कम्युनिकेट इन 45 सेकेंड्स, आपको एक मिनट में कम्युनिकेट करना है, क्योंकि सारा कंजम्पशन अब अगर इंस्टाग्राम पे आ रहा है, और आप एक्स पोस्ट करते रहेंगे, आप फेसबुक पे, मतलब वो भी अच्छे माध्यम है, 15% 20% उनका भी शेयर है, बट इफ यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम, यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, If you are not communicating on Instagram, you are not communicating with the new generation. इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा उस समय के माध्यम क्या है ये हमको समझना पड़ता है और उसके हिसाब से अपने आपको बदलना भी पड़ता है।
0: आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे नेताओं को कि लंबे भाषण मत दीजिएगा। अभी शॉर्ट्स का जमाना आ गया, छोटे छोटे में आपको जो बोलना है वो छोटे में बोलिए, लंबे लंबे भाषण नहीं चलेंगे।
1: कम्युनिकेशन अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है और जो कम्युनिकेटर जो होता है ना, कम शब्दों में राइट बात जो बता पाए वो कम्युनिकेटर होता है और किसी भी नेता के लिए कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है।
0: एक और एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि मैंने शुरुआत उससे की थी इसी के लिए कि आपका थर्ड टर्म चल रहा है, यानी बीच का टर्म तो भूल जाते हैं हम, लेकिन ठीक है, दो टर्म आपके हो चुके हैं। नॉर्मली तीसरे टर्म की तरफ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री जाता है बीजेपी में तो रास्ता उसका थोड़ा सा ट्रैजेक्टरी रास्ता थोड़ा बदल जाता है। हमने सुना है कि कई लोग यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं कि जो इच्छा रखते हैं, आप अच्छे मन से कहिए कुछ अलग मन से कहिए, कि उनको लगता है कि आप ऊपर जाएं, दिल्ली की तरफ आप चले जाएं, और फिर हम खबर सुनते हैं कि हरदीप पुरी उनका टिकट काट दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ये सब हो रहा है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, फलानी बातचीत चल रही है, तो फिर आपका नाम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर आना शुरू हो जाता है। ये क्या है, मतलब आप एक्चुअली क्या है, मतलब आप कई बार क्लैरिफाई कर चुके हैं लेकिन बातें ऐसी नहीं होती है।
1: देखिए,
0: मैं तो धुआं है, तो आग है तो धुआं है,
1: आग रहती है धुआं रहता है, पॉलिटिक्स में सब चलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा रास्ता अभी बहुत साफ है। मेरा रास्ता गढ़चिरौली से शुरू होता है और गढ़हिंगलज तक जाता है, ये रास्ता बिल्कुल पक्का है, इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरा रास्ता, मैं दिल्ली ये प्रवासी के रूप में जाता हूँ, निवासी के रूप में नहीं, और मैं वैसे ही रहूँगा। मेरी पार्टी ये चाहती है कि मैं महाराष्ट्र में काम करूँ, मेरे नेता ये चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र में काम करूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं महाराष्ट्र में ही काम करने वाला।
0: नहीं, ऐसा क्यों, लेकिन अगर दिल्ली में जाने में बुराई क्या है?
1: बिल्कुल बुराई नहीं है।
0: बुराई क्या है, मतलब अगर कोई
1: भाई
0: बुराई, खुद प्रधानमंत्री भी तो दिल्ली गए।
1: ना, बुराई नहीं है, पर जबरदस्ती क्यों भेजना चाहते हो? समय आएगा तो वहां भी जाएंगे, ये तो बड़े अजीब जबरदस्ती है। नहीं, अभी जाओ, आज जाओ, कल जाओ, अभी आपका टिकट बुक कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हर चीज का अपना समय होता है। अभी मेरा समय महाराष्ट्र में चल रहा है, बहुत चीजें कर रहा हूं, बहुत चीजें करनी है। मेरी पार्टी की बहुत अपेक्षाएं मेरे से है, मेरे नेताओं की बहुत अपेक्षा है, उनको पूरा करूंगा। उसके बाद जब नेता कहेंगे दिल्ली आ जाओ तो दिल्ली आऊंगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ दिल्ली बुलाएंगे दिल्ली जाऊंगा, और कह दिया नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं नागपुर चले जाओ तो नागपुर अपने घर धर्मपेट।
0: सो देयर इज नो कंपल्शन कि आपको दिल्ली जाना ही है, आपने एक ट्रैजेक्टरी बना के रखी है कि आपने आप
1: बिल्कुल कोई
0: आगे हम उस तरफ जाएंगे,
1: कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी।
0: और ये कॉम्पिटिशन दिखाई देता है कि आप प्रधानमंत्री को मिलने जाते हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री को मिलते हैं, आप गृहमंत्री के पास जाके एसोसिएशन की मांग करते हैं कि भाई हमें पैसे ड्राउट के लिए पैसे दीजिए। उस दिन हमने देखा एकनाथ शिंदे उनकी तरफ से भी आए कि हमने प्रधानमंत्री से मांग की। ये कॉम्पिटिशन चल रहा है डेप्यूटी सीएम, सीएम, फॉर्मर डेप्यूटी सीएम, नाउ सीएम वैसा।
1: नहीं, मेरा अपना मानना यह है कि आप एकनाथ शिंदे जी को महज डिप्टी सीएम के रूप में देखते हैं। वो केवल डिप्टी सीएम नहीं है, हमारी जो एक साथी पार्टी है, कोएलिशन पार्टनर है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और ये एक ऐसा कोएलिशन पार्टनर है कि जो हमारे पहले तीन कोएलिशन पार्टनर में आता है। इसलिए भले ही यहाँ पर वो डिप्टी सीएम के रूप में हो, पर देश की राजनीति में हमारे कोएलिशन पार्टनर के रूप में वो होते, इसलिए प्रधानमंत्री जी से भी उनको मिलना पड़ता है, एनडीए की बैठकों में भी उनको जाना पड़ता है, और प्रधानमंत्री से वो मिलते हैं, और अगर वो प्रधानमंत्री जी के पास इस एक्सट्रीम ड्राउट की सिचुएशन में जाएंगे
0: तो वो शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर जाते
1: हैं, शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर वो मिलते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की भी कोई चीज है तो मुझसे बात करके ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बिना बताए वो जाते हैं।
0: आप पूरे कंट्रोल में है, मतलब कोई ऐसे इंटरनल कॉम्पिटिशन की?
1: एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल पूरा मेरा है, मैं व्यक्तियों को कंट्रोल नहीं करता, इसलिए व्यक्तियों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ, पर एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा मेरा कंट्रोल।
0: बट एज अ चीफ मिनिस्टर मंत्रियों पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए, उसमें क्या है, मतलब अगर चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मंत्रियों को भी कंट्रोल करना है?
1: ना, मंत्रियों को कंट्रोल करना है ना एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल, व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल था, ये सभी को मालूम है क्या है।
0: चलिए, हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते मुझे आपसे एक पूछना है, क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद एक्चुअली आपका ट्विटर बायो देखा और उसमें आपने लिखा है कि राम सेवक, कार सेवक एंड महाराष्ट्र सेवक, अपने आप को आप डिस्क्राइब करते हैं।
1: इसका मतलब आपने तीन चार सालों से देखा नहीं है?
0: हाँ, मैंने बहुत दिन से
1: तीन चार सालों से ये
0: आज मैंने अचानक देखा कि
1: तीन चार सालों से यही है
0: ये टर्म। ये आपका ये कैसा है, मतलब उसका लिंक कैसे होगा, मतलब पहले राम सेवक, कार सेवक और फिर महाराष्ट्र सेवक, या सब एक साथ कैसे देखे हम?
1: देखिए, आप कैसा भी कह लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी ऐसा पिया, ऐसा पिया, ऐसा पिया, ऊपर से पिया, वो एक ही बात है। मैं महाराष्ट्र सेवक हूँ ही, मैं राम सेवक हुई और मैं कार सेवक हूँ ही।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, एज यूजुअल।

0: आपका थर्ड टर्म है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने 2650 दिन पूरे किए हुए हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की अगर सूची निकालें तो उसमें आपका यह टर्म तीन नंबर पे आता है, यानी आप दो एक नंबर पे भी जा सकते हैं आज की स्थिति में। तो शुरुआत तो मैं इसी से करना चाहूंगा कि कोई बड़ा चैलेंज आज की स्थिति में, जब आप लग रहे हैं कि आप सेटल्ड है महाराष्ट्र में एज अ चीफ मिनिस्टर, कोई बड़ा चैलेंज आपके सामने आज की स्थिति में?
1: देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि चैलेंजेस हमेशा रहते ही है। हम एक विकसनशील अर्थव्यवस्था है और विकसनशील अर्थव्यवस्था में हमेशा कोई ना कोई चैलेंज आपके सामने होता है। लेकिन अगर आप इमीडिएट चैलेंज की बात करेंगे तो इस वर्ष एल नीनो के कारण जिस प्रकार का सूखा और अकाल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है वो मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज है। करीब 75% महाराष्ट्र में जो हमारा क्रॉप है वो समाप्त हो गया है, ह्यूज क्रॉप लॉस। पीने के पानी की भी कुछ दिक्कत आगे आएगी, मवेशियों के लिए चारे की भी दिक्कत आएगी, तो अभी उसी का प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि वही सबसे बड़ा चैलेंज मैं मानता हूँ आज।
0: सर, दूसरी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आप जब भी सत्ता में आ जाते हैं अचानक लोग सड़क पे दिखना शुरू हो जाता है अलग अलग इलाकों में। जैसे पहले टर्म में हमने देखा कि देर वर लार्ज नंबर ऑफ मराठा प्रोटेस्ट आस्किंग फॉर द मराठा कोटा, फिर उसके बाद आपने बिल लाया और मराठा आरक्षण आपने लागू किया। इस बार आपका टर्म शुरू हो गया और पूरे देश भर में एक माहौल बनाया कि जिसके वजह से अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं। ट्राइबल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एमपीएससी के स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुंबई में हमने देखा कि अलग अलग मांगों को लेकर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, इससे पहले का प्रोटेस्ट हुआ। ये सारा जो माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? इज इट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इज इट बिकॉज ऑफ देयर इज अ डिस्ट्रेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए सड़क पर नजर?
1: देखिए, मैं इसको दो कैटेगरी में विभाजित करना चाहता हूं। कुछ प्रोटेस्ट जेन्युइन है, लोगों की समस्या है, कभी किसानों की होती है, कभी आदिवासियों की होती है, कभी स्टूडेंट्स की होती है, और कुछ प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड है। ऐसा है कि अगर हम लोग कुल मिलाकर ये प्रोटेस्ट का डिजाइन देखें, जैसे मसलन सीजेपी की बात अगर हम करें तो ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट एक हमारे देश में एक जो एक वीक अपोजिशन है, इस वीक अपोजिशन ने जो वैक्यूम तैयार किया है उस वैक्यूम को भरने का प्रयास ये सीजेपी जैसे लोग कर रहे हैं।
0: ये एनालिसिस में पहली बार सुन रहा हूं।
1: बिल्कुल,
0: आप कह रहे हैं कि अपोजिशन वीक है इसके वजह से सीजेपी प्रोटेस्ट?
1: मैं बिल्कुल बता रहा हूं, एक डिजाइन है और ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट इस विचारों का डिजाइन है कि जिसमें ये जो बिल्कुल अराजकतावादी ताकतें जो होती है एनार्किस्ट, ये एनार्किस्ट फोर्सेस ये अलग अलग तरह प्रकार से रीग्रुप होते हैं अलग अलग प्रकार से, और उसका एक आविष्कार ये सीजेपी के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। देखिए, ये सारे लोग जो है ये आइडियोलॉजी की लड़ाई हार चुके हैं। अब ये जानते हैं कि इनके आइडियोलॉजी पे लोग साथ में नहीं आने वाले, अब ये इश्यूज की लड़ाई पर आए, और इश्यूज की लड़ाई ये कभी भी कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी में आप लड़ ही सकते हैं, क्योंकि कभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में ग्लास पूरा भरा नहीं होता है। तो सरकार आधा भरा हुआ ग्लास दिखाती है और इश्यूज के ऊपर आप आधा खाली ग्लास दिखा सकते हो, इस प्रकार की लड़ाई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि इनका डिजाइन देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सीजेपी हो, ये सारे के सारे लोग संविधान दिखा दिखा कर ये सारे प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट क्या है? तो संविधान ने तैयार की हुई सारी संस्थाएं ये खराब है, आरबीआई भी खराब है, इलेक्शन कमीशन भी खराब है, सुप्रीम कोर्ट भी खराब है, सीएजी भी खराब है, ये सारी संस्थाएं खराब है। अब देखिए, ये डिजाइन ये है कि धीरे धीरे इन सारी संस्थाओं को डिमोनाइज करना, इनको डिमोनाइज करने के बाद ये बोलना कि देखिए संविधान ने तैयार की हुई संस्थाएं आपको न्याय नहीं दे सकती, और फिर धीरे धीरे ये लोग इस बात को प्रतिपादित करेंगे कि ये संविधान आपको न्याय नहीं दे सकता, संविधान दिखा दिखा कर ही संविधान के खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है। ये लोग एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट व्यवस्था को लाना चाहते, एक ऐसी व्यवस्था की जो, और ये मैं नहीं कहता, आप देखिए जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में जो एनआरकी की बात की थी, अगर आप उसको पढ़ेंगे बिल्कुल सेम उसी डिजाइन से काम चल रहा है, उसी डिजाइन से, मतलब कोई भी लॉजिकल बात नहीं कहना, और किसी ने लॉजिकल बात कही तो उसको एक प्रकार से ट्रोल कर देना, ये बिल्कुल इनका एक डिजाइन है कि जिस डिजाइन के तहत इस देश में एनआरकी लाकर एनआरकिस्ट फोर्सेस यहां पर अल्ट्रा लेफ्टिस्ट व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, और अब इसमें सीजेपी और कांग्रेस में होड़ लगी है,
0: देयर इज अ कॉम्पिटिशन लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि पिछली बार जब सीजेपी का प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ था, द गवर्नमेंट एंगेज्ड विद देम, द गवर्नमेंट ने वहां पर दो बड़े सीनियर मंत्री वहां पर भेजे, उनके साथ में बात की, अगर वो एनार्किस्ट फोर्सेस है तो उनके साथ में सरकार ने बातचीत क्यों शुरू की, नंबर एक। नंबर दो, आप कह रहे हैं कि उनकी डिमांड है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन क्या पेपर लीक की वजह से जो जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी इस्तीफे की मांग करना, आपने भी तो कई बार आंदोलन किया होगा, महाराष्ट्र में मैंने आपको कई बार मंत्रियों का इस्तीफा मांगते हुए आंदोलन करते हुए देखा हुआ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आंदोलन करते हुए देखा हुआ है, तो पेपर लीक को लेकर मंत्री का इस्तीफा मांगना ये लॉजिकल कैसे नहीं है, किस तरीके से आप उसको रखें?
1: देखिए, पहली बात तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो एंगेज किया ऐसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल करना ही चाहिए, अगर आप डेमोक्रेसी को मानते हैं तो आपको सबके साथ बातचीत करनी पड़ती है। हम लोगों ने तो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो नक्सलवादी थे उनके साथ भी बातचीत की ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में करनी पड़ती है आपको, डेमोक्रेसी में बातचीत से ही हल निकलता है और हल निकालने का प्रयास करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजी हमको मंजूर है, या वो जो करते हैं वो मंजूर है, या जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को मार दिया ये हमको ठीक था इसलिए हमने उनसे बात की, ऐसा नहीं होता है। फिर भी प्रयास ये करना पड़ता है कि आप एंगेज विद द पीपल, ट्राई टू परस्यूएट देम, ट्राई टू कन्विंस देम, और नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान ने आपको जिस प्रकार से जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ, गलत हुआ, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। उसके बाद गवर्नमेंट ने नीट की परीक्षा ली, ट्रांसपेरेंट परीक्षा हुई, परीक्षा का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद आप जंतर मंतर पे जमा होते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमा हुई है, आपको इस्तीफा मांगने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन वहां पर हो रहा था, जिस प्रकार की भद्दी गालियां प्रधानमंत्री जी के निकाली जा रही थी, और जिस प्रकार के वहां पर वाकयात थे, अब तो सामने आ रहा है 2000 तो ऐसे लोग थे वहां पर जो हिस्ट्री शीटर्स है, जिनके खिलाफ बहुत जघन्य इस प्रकार के अपराध है, तो ये जो सारा, देखिए इसको अराजकता कहते हैं, दिस इज एनआरकी, इस्तीफा मांगना इज नॉट एनआरकी, आप उपोषण करें ये एनआरकी नहीं है, लेकिन इस प्रकार के लोगों को जमा करके और जिस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा था, जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार हो रहा था, ये एनआरकी।
0: लेकिन फिर भी जो आंदोलनकारी, उन्होंने तो आपकी तारीफ की, मतलब जितना मैंने सुना है उसमें तो हमने देखा कि वो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, उन्होंने हम पर लाठीचार्ज नहीं किया, उन्होंने हमें आंदोलन करने दिया, जबकि दिल्ली में हमने देखा कि उसको लेकर काफी गुस्सा था कि लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी रही, आप मतलब आपका नजरिया थोड़ा अलग है उसको लेकर, या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से दिल्ली का आंदोलन हैंडल किया जा सकता था?
1: ऐसा है कि अगर मेरी आपके मालिक को गाली देने की इच्छा है तो मैं कहूंगा साहिल अच्छा आदमी है, मालिक खराब है, प्रॉब्लम मालिक का है, साहिल बहुत बढ़िया आदमी है, साहिल जैसा आदमी नहीं है, ये बहुत कॉमन है, इससे साहिल ने खुश नहीं होना चाहिए, साहिल को समझना नहीं होना ही नहीं चाहिए, साहिल को ये समझना, अगर साहिल को ये समझा नहीं कि भाई ये किस लिए बोल रहे हैं कि साहिल बहुत अच्छा आदमी है, तो फिर तो मतलब सॉरी टू से, पर इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो नहीं सकती ना साहिल।
0: चलिए ठीक है आप, लेकिन मैं ये तो पूछ सकता हूं ना कि जो दिखता है वो तो हम पूछ ही सकते हैं ना, कि ये बात भी तो सही है कि आपकी पुलिस ने बड़ी समझदारी से इस पूरे आंदोलन को हैंडल किया, देयर वाज नॉट अ सिंगल केस ऑफ लाठी चार्ज, देयर वाज नॉट अ सिंगल केस ऑफ फायरिंग, मतलब जो टीयर गैस छोड़ा जाता है, देर इज नॉट अ सिंगल केस ऑफ दैट, कोई ब्रुटैलिटी की खबर नहीं आई। इनफैक्ट महाराष्ट्र वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सबसे पहले केसेस वापस लेने में भी महाराष्ट्र था। कोई भी ऐसी धाराएं FIR में नहीं लगाई गई जिसके वजह से आप उनको क्रिमिनलाइज करें या स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े। ये भी तो रियलिटी है, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो तारीफ हो रही है।
1: देखिए
0: अब इसमें आप वो तारीफ नहीं लेना चाहते, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता।
1: देखिए अगर वो सही मन से तारीफ करते ना तो मैं खुशी खुशी तारीफ ले भी लेता, उनको थैंक यू भी बोल देता, पर उस तारीफ के पीछे का डिजाइन मुझे मालूम है,
0: देयर इज अ ट्रैप,
1: इसलिए ऐसी तारीफ ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नॉर्मली महाराष्ट्र में हमेशा हमारी ये पॉलिसी रही है कि जहां तक हो सके एंगेज करिए, और जब तक कानून व्यवस्था का एक्सट्रीम प्रयास मतलब को एक्सट्रीम हानि जब तक नहीं पहुंचती है तब तक हम बल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन कभी कभी ये होता है, आप देखिए जैसे दिल्ली में हुआ कि अगर ये लोग संसद चले जाते, सवाल वो नहीं होता है, कुछ लोग संसद चले जाएंगे तोड़फोड़ करेंगे, इससे देश की बदनामी होती है, इससे पुलिस फोर्स की बदनामी होती है, और दुनिया में यह संदेश जाता है कि ये देखिए कितनी वीक डेमोक्रेसी है, ये कितनी वीक कंट्री है कि जिसके संसद में लोग घुस जाते हैं और संसद के अंदर एक प्रकार से तोड़फोड़ हो जाती है, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है। देश की अल्टीमेटली एक जो हमारा डिटेरेंट होता है दुनिया में, एक मजबूत देश, ये उसके लिए इसकी हानि होती है। ये तो इसीलिए कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि जब कोई मानने को तैयार नहीं होता, लोग कानून हाथ में ले लेते हैं, जो संविधानिक व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को तोड़ देते हैं, तो बल का प्रयोग तो करना पड़ता है, पर बल का प्रयोग अंतिम होना चाहिए। और महाराष्ट्र में हम लोग बहुत संयम के साथ प्रयास ये करते हैं कि बल का प्रयोग कम से कम करना पड़े।
0: लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का भी एक काम होता है कि वो एंगेज करे, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ में एंगेज करे, जो महाराष्ट्र में हमने कई बार देखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भी अगर उसी तरीके का एंगेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ में या प्रोटेस्टर्स के साथ में होता तो हो सकता है कि जिस तरीके से उस प्रोटेस्ट ने बाद में रूप लिया उस तरीके से शायद चीजें नहीं होती?
1: देखिए एंगेज करे किसके साथ, ऐसा है
0: देयर इज नो बॉडी,
1: देयर इज एक प्रकार से वो फेसलेस था, और जो उसको चला रहे थे उनके भी कंट्रोल में लोग कहां थे उनके भी कंट्रोल में लोग नहीं थे। तो कई बार यह ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाता है कि जिसमें कोई लीडर नहीं है, जो लीडर क्लेम कर रहे हैं अपने आप को वो भी लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो बन गए लीडर लेकिन लोग उनके लीडरशिप के लिए नहीं आए, कोई किसी और कॉज के लिए आए, कोई जैसे आपने देखा जंतर मंतर पे जिनके इंटरव्यूज लोग ले रहे थे तो कई लोग तो ऐसा था जिनसे नीट से भी लेन देन नहीं था, किसी चीज से लेन देन नहीं था, कोई अलग अलग अपने कॉज के लिए आए थे, कुछ लोग रील बनाने के लिए आए थे, कुछ लोग पॉडकास्ट करने के लिए आए थे। तो मुझे यह लगता है कि एंगेज करने के लिए भी आपको लोग चाहिए किसके साथ। अब जब ये सारा वहां का माहौल हुआ, वहां लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद ये जो सारे एलिमेंट है जो अलग अलग प्रकार के ये चले गए, तब जो बचे हुए लोग हैं उनके साथ गवर्नमेंट ने एंगेज किया और एंगेज करके उसमें से हल निकाला।
0: नहीं लेकिन व्हाट इज द बिगेस्ट टेक अवे ऑफ दिस, बिकॉज मैंने चेंज ये जो नोटिस किया आपके इसमें कि आपने समय रैना से मुलाकात की, आपने एक मीटिंग बुलाई थी मुंबई पुलिस और जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है जिनके खिलाफ एक वक्त पे मुंबई पुलिस ने ही FIR दर्ज किए थे फॉर यूजिंग ऑब्सीन लैंग्वेजेस जो भी उनके सेक्शन थे उसमें। You try to engage with them. क्या आपको लगता है कि ये engagement की कमी हो रही है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में, कि उनकी जो ये Gen Z generation है उनके साथ में उनके लैंग्वेज में engagement शायद नहीं हो पा रहा है जो आपको लगता है कि जरूरी है, उनके साथ बातचीत जरूरी है, उनका तजुर्बा अलग है, उनका सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग है, उनके साथ में ये जरूरी है ऐसा आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि engagement बहुत जरूरी है, कम हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अल्टीमेटली मैं आपको एक ही उदाहरण बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको याद होगा एक इंस्टा पोस्ट डाला, एक इंस्टा पोस्ट, और उसने सारे अल्गोरिदम तोड़ दिए।
0: आप इंस्टा पे हैं?
1: हाँ
0: आप रील्स डालते हैं?
1: हाँ मैं डालता हूँ, मैं सारे प्लेटफॉर्म पर हूँ, ऑल प्लेटफॉर्म्स।
0: यू ऑल्सो डू द वीडियोज एंड ऑल?
1: या आई डू, मैं करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये होता है, आपको रियलाइज होता है कि भाई एक नई जनरेशन है, इस नई जनरेशन के साथ उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, उनको हमको समझना पड़ेगा और उनको एंगेज करना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं, हम करेंगे, कोई सवाल नहीं है। और देखिए, जो लोग जंतर मंतर पे थे केवल वो जेंजी है ऐसा हम समझेंगे तो ये गलत बात है। देखिए, ये जो बहुत बड़ी जनरेशन है, इस जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कई लोगों के साथ हम लगातार एंगेज करते हैं, कई कार्यक्रमों में मैं जाता हूं, उनके साथ एंगेज करता हूं। और मैं ये मानता हूं, देखिए, ये पहली जनरेशन है कि जो 100% टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई है। मिलेनियल्स भी पूरे टेक्नोलॉजी के साथ पैदा नहीं हुए, वो एक प्रकार से मतलब उस बीच के इसमें पैदा हुए। लेकिन जेन जी एक ऐसी जनरेशन है कि जो 100% टेक्नोलॉजी के साथ, स्मार्टफोन्स के साथ ये पैदा हुई है, इसलिए इसका एक्सपोजर अलग है। किसी भी इसके पहले की जनरेशन से इनका ग्लोबल एक्सपोजर अलग है, इनको जो चीज़ें परोसी जाती है वो चीज़ें भी अलग है, मतलब उसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें, कुछ बुरी भी चीज़ें। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इनकी विचार की जो प्रक्रिया है, क्षमता है, ये थोड़ी अलग है, तो उस हिसाब से एंगेज करना पड़ेगा। मुझे लगता है हम कर रहे हैं, करेंगे।
0: नहीं, क्योंकि कारण इसका ये हुआ ना कि ये इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं है, आप एक आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद एक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इज इनविंसिबल, बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इस तरीके से लग रहा था। और अचानक देश में माहौल बदल गया, अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट होने लग गए, सवाल खड़े होने लग गए, SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया, न्यूज़पेपर के रिपोर्ट में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके पर सवाल उठे, ये सारी चीजें देखते हुए आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, क्योंकि 2029 में हम चुनाव का सामना करेंगे, पार्टी को भी अपने आप में कुछ बदल करना पड़ेगा? आप 230 विधायकों के साथ इस स्टेट में राज कर रहे हैं, अगर आपके अलायंस के पूरे विधायक देखे तो, लेकिन आज फिर भी अपोजिशन आपको सड़क पे नजर आ रहा है एक तरीके से, अलग अलग फॉर्म में, कोई रवैया चेंज करना पड़ेगा पार्टी को?
1: देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो लग रहा है कि भाई बहुत माहौल बदल रहा है वगैरह, इसमें कोई मैं नहीं मानता कि तथ्य है, क्योंकि जैसे आज ही त्रिपुरा के चुनाव का रिजल्ट आया, वहां पर लोकल बॉडी का भी रिजल्ट आया, और लोकल बॉडी में टोटल स्वीप किया है बीजेपी ने, टोटल त्रिपुरा में। और सबसे बड़ी बात यह है, ये इसलिए मैं भी बताना चाहता हूं, त्रिपुरा के लोकल बॉडी इलेक्शंस EVM पर नहीं हुए, बैलेट पर हुए, और बैलेट के चुनाव में बीजेपी ने आज ही त्रिपुरा में पूरा स्वीप किया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको ये लोग जो दिख रहे हैं, जो लोग मुखरता के साथ बोल रहे हैं, इसको अगर आप पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन समझेंगे तो आप गलती करेंगे। देश में बड़ा मास ऐसा है जो बोलता नहीं है, जो कुछ ना कुछ कर रहा है, और जो बीजेपी के साथ है, और वही बीजेपी की ताकत है, और हम उसके साथ एंगेज कर रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी पार्टी स्टैटिक नहीं हो सकती है, आपको अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। और इसमें तो सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी हमें हमेशा ये कहते हैं कि आपको पिछला चुनाव जिन तरीकों ने जीता कर दिया, वो तरीके अगले चुनाव में काम नहीं आते, आपको संवाद के माध्यम बदलने पड़ते हैं, आपको विषय बदलने पड़ते हैं, आपको नए तरीके से रीच आउट होना पड़ता है। ये हमेशा प्रधानमंत्री जी का कहना होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत डायनामिक होती है, जनरेशन बदलती है, उनके साथ आपको एंगेज करना पड़ता है, तो आपके तरीकों को भी बदलना पड़ता है। जैसे आज अगर हम विचार करें तो पिछले, समझ लीजिए कि 2024 का चुनाव, 24 के चुनाव में सबसे बड़ा मतलब जो कम्युनिकेशन हुआ जो भी, ये YouTube था, और यूट्यूबर्स थे कि जिन्होंने नरेटिव को मेक ब्रेक शेप किया,
0: जो मेनस्ट्रीम में नहीं,
1: हाँ मेनस्ट्रीम में जो। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज 40% ट्रैफिक इंस्टाग्राम पर है। अब लोग लंबी चीजें देखना नहीं चाहते, अब यू हैव टू कम्युनिकेट इन 45 सेकेंड्स, आपको एक मिनट में कम्युनिकेट करना है, क्योंकि सारा कंजम्पशन अब अगर इंस्टाग्राम पे आ रहा है, और आप एक्स पोस्ट करते रहेंगे, आप फेसबुक पे, मतलब वो भी अच्छे माध्यम है, 15% 20% उनका भी शेयर है, बट इफ यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम, यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, If you are not communicating on Instagram, you are not communicating with the new generation. इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा उस समय के माध्यम क्या है ये हमको समझना पड़ता है और उसके हिसाब से अपने आपको बदलना भी पड़ता है.
0: आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं नेताओं को कि लंबे भाषण मत दीजिएगा. अभी शॉर्ट्स का जमाना आ गया, छोटे छोटे में आपको जो बोलना है वो छोटे में बोलिए, लंबे लंबे भाषण नहीं चलेंगे.
1: कम्युनिकेशन अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है और जो कम्युनिकेटर जो होता है ना, कम शब्दों में राइट बात जो बता पाए वो कम्युनिकेटर होता है और किसी भी नेता के लिए कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है.
0: एक और एक बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि मैंने शुरुआत उससे की थी इसी के लिए कि आपका थर्ड टर्म चल रहा है, यानी बीच का टर्म तो भूल जाते हैं हम, लेकिन ठीक है दो टर्म आपके हो चुके हैं. नॉर्मली तीसरे टर्म की तरफ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री जाता है बीजेपी में तो रास्ता उसका थोड़ा सा ट्रैजेक्टरी रास्ता थोड़ा बदल जाता है. हमने सुना है कि कई लोग यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं कि जो इच्छा रखते हैं, आप अच्छे मन से कहिए कुछ अलग मन से कहिए, कि उनको लगता है कि आप ऊपर जाएं, दिल्ली की तरफ आप चले जाएं. और फिर हम खबर सुनते हैं कि हरदीप पुरी उनका टिकट काट दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ये सब हो रहा है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, फलानी बातचीत चल रही है, तो फिर आपका नाम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर आना शुरू हो जाता है. ये क्या है, मतलब आप एक्चुअली क्या है, मतलब आप कई बार क्लैरिफाई कर चुके हैं लेकिन बातें ऐसी नहीं होती है.
1: देखिए
0: मैं तो धुआं है, तो आग है तो धुआं है,
1: आग रहती है धुआं रहता है, पॉलिटिक्स में सब चलता है. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा रास्ता अभी बहुत साफ है. मेरा रास्ता गढ़चिरौली से शुरू होता है और गढ़ हिंगलस तक जाता है, ये रास्ता बिल्कुल पक्का है, इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं. मेरा रास्ता, मैं दिल्ली ये प्रवासी के रूप में जाता हूँ, निवासी के रूप में नहीं, और मैं वैसे ही रहूँगा. मेरी पार्टी ये चाहती है कि मैं महाराष्ट्र में काम करूँ, मेरे नेता ये चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र में काम करूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं महाराष्ट्र में ही काम करने वाला हूँ.
0: नहीं ऐसा क्यों, लेकिन अगर दिल्ली में जाने में बुराई क्या है?
1: बिल्कुल बुराई नहीं है.
0: बुराई क्या है, मतलब अगर कोई
1: भाई
0: बुराई, प्रधानमंत्री भी तो दिल्ली गए.
1: ना, बुराई नहीं है, पर जबरदस्ती क्यों भेजना चाहते हो? समय आएगा तो वहां भी जाएंगे. ये तो बड़े अजीब जबरदस्ती है, नहीं अभी जाओ आज जाओ कल जाओ, अभी आपका टिकट बुक कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है. हर चीज का अपना समय होता है. अभी मेरा समय महाराष्ट्र में चल रहा है, बहुत चीजें कर रहा हूँ, बहुत चीजें करनी है. मेरी पार्टी की बहुत अपेक्षा है मेरे से है, मेरे नेताओं की बहुत अपेक्षा है, उनको पूरा करूंगा. उसके बाद जब नेता कहेंगे दिल्ली आ जाओ तो दिल्ली आऊंगा. मैं तो हमेशा कहता हूँ दिल्ली बुलाएंगे दिल्ली जाऊंगा, और कह दिया नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं नागपुर चले जाओ तो नागपुर अपने घर धर्मपेट.
0: सो देयर इज नो कंपल्शन कि आपको दिल्ली जाना ही है, आपने एक ट्रैजेक्टरी बना के रखी है कि आपने आप
1: बिल्कुल कोई
0: आगे कोई हम उस तरफ जाएंगे,
1: कोई कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी.
0: और ये कंपटीशन दिखाई देता है कि आप प्रधानमंत्री को मिलने जाते हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री को मिलते हैं, आप गृहमंत्री के पास जाके एसोसिएशन की मांग करते हैं कि भाई हमें पैसे ड्राउट के लिए पैसे दीजिए. उस दिन हमने देखा एकनाथ शिंदे उनकी तरफ से भी आए कि हमने प्रधानमंत्री से मांग की. ये कॉम्पिटिशन चल रहा है डेप्यूटी सीएम सीएम फॉर्मर डेप्यूटी सीएम नाउ सीएम वैसा.
1: नहीं, मेरा अपना मानना यह है कि आप एकनाथ शिंदे जी को महज डिप्टी सीएम के रूप में देखते हैं. वो केवल डिप्टी सीएम नहीं है, हमारी जो एक साथी पार्टी है कोएलिशन पार्टनर है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो. और ये एक ऐसा कोएलिशन पार्टनर है कि जो हमारे पहले तीन कोएलिशन पार्टनर में आता है. इसलिए भले ही यहां पर वो डिप्टी सीएम के रूप में हो, पर देश की राजनीति में हमारे कोएलिशन पार्टनर के रूप में वो होते, इसलिए प्रधानमंत्री जी से भी उनको मिलना पड़ता है, एनडीए की बैठकों में भी उनको जाना पड़ता है, और प्रधानमंत्री से वो मिलते हैं. और अगर वो प्रधानमंत्री जी के पास इस एक्सट्रीम ड्राउट की सिचुएशन में जाएंगे
0: तो वो शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर जाते
1: हैं, शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर वो मिलते हैं. और अगर मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की भी कोई चीज है तो मुझसे बात करके ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बिना बताए वो जाते
0: हैं. आप पूरे कंट्रोल में है, मतलब कोई ऐसे इंटरनल कंपटीशन की?
1: एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल पूरा मेरा है, मैं व्यक्तियों को कंट्रोल नहीं करता, इसलिए व्यक्तियों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं करता भी नहीं हूं, पर एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा मेरा कंट्रोल.
0: बट एज अ चीफ मिनिस्टर मंत्रियों पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए, उसमें क्या है? मतलब अगर चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मंत्रियों को भी कंट्रोल करना है?
1: ना, मंत्रियों को कंट्रोल करना है ना एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल, व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करते. एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल था ये सभी को मालूम है क्या है.
0: चलिए हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते मुझे आपसे एक पूछना है, क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद एक्चुअली आपका ट्विटर बायो देखा और उसमें आपने लिखा है कि राम सेवक, कार सेवक एंड महाराष्ट्र सेवक, अपने आप को आप डिस्क्राइब करते हैं।
1: इसका मतलब आपने 3-4 सालों से देखा नहीं है?
0: हाँ, मैंने बहुत दिन से
1: 3-4 सालों से ये
0: आज मैंने अचानक देखा कि
1: 3-4 सालों से यही है
0: ये टर्म। ये आपका ये कैसा है, मतलब उसका लिंक कैसे होगा, मतलब पहले राम सेवक, कार सेवक और फिर महाराष्ट्र सेवक, या सब एक साथ कैसे देखे हम?
1: देखिए, आप कैसा भी कह लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी ऐसा पिया, ऐसा पिया, ऐसा पिया, ऊपर से पिया, वो एक ही बात है। मैं महाराष्ट्र सेवक हूं ही, मैं राम सेवक हुई और मैं कार सेवक हूं ही।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, एज यूजुअल।

0: आपका थर्ड टर्म है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने 2650 दिन पूरे किए हुए हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की अगर सूची निकालें तो उसमें आपका ये टर्म तीन नंबर पे आता है, यानी आप दो एक नंबर पे भी जा सकते हैं आज की स्थिति में। तो शुरुआत तो मैं इसी से करना चाहूंगा कि कोई बड़ा चैलेंज आज की स्थिति में, जब आप लग रहे हैं कि आप सेटल्ड है महाराष्ट्र में एज अ चीफ मिनिस्टर, कोई बड़ा चैलेंज आपके सामने आज की स्थिति में?
1: देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि चैलेंजेस हमेशा रहते ही है। हम एक विकसनशील अर्थव्यवस्था है और विकसनशील अर्थव्यवस्था में हमेशा कोई ना कोई चैलेंज आपके सामने होता है। लेकिन अगर आप इमीडिएट चैलेंज की बात करेंगे तो इस वर्ष एल नीनो के कारण जिस प्रकार का सूखा और अकाल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है, वो मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज है। करीब 75% महाराष्ट्र में जो हमारा क्रॉप है वो समाप्त हो गया है, ह्यूज क्रॉप लॉस। पीने के पानी की भी कुछ दिक्कत आगे आएगी, मवेशियों के लिए चारे की भी दिक्कत आएगी, तो अभी उसी का प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि वही सबसे बड़ा चैलेंज मैं मानता हूँ आज।
0: सर, दूसरी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आप जब भी सत्ता में आ जाते हैं अचानक लोग सड़क पे दिखना शुरू हो जाता है अलग अलग इलाकों में। जैसे पहले टर्म में हमने देखा कि देर वर लार्ज नंबर ऑफ मराठा प्रोटेस्ट आस्किंग फॉर द मराठा कोटा, फिर उसके बाद आपने बिल लाया और मराठा आरक्षण आपने लागू किया। इस बार आपका टर्म शुरू हो गया और पूरे देश भर में एक माहौल बनाया कि जिसके वजह से अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं। ट्राइबल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एमपीएससी के स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुंबई में हमने देखा कि अलग अलग मांगों को लेकर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, इससे पहले का प्रोटेस्ट हुआ। ये सारा जो माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? इज इट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इज इट बिकॉज ऑफ देयर इज अ डिस्ट्रेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए सड़क पर नजर?
1: देखिए, मैं इसको दो कैटेगरी में विभाजित करना चाहता हूं। कुछ प्रोटेस्ट जेन्युइन है, लोगों की समस्या है, कभी किसानों की होती है, कभी आदिवासियों की होती है, कभी स्टूडेंट्स की होती है, और कुछ प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड है। ऐसा है कि अगर हम लोग कुल मिलाकर ये प्रोटेस्ट का डिजाइन देखें, जैसे मसलन सीजेपी की बात अगर हम करें, तो ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट एक हमारे देश में एक वीक अपोजिशन है। इस वीक अपोजिशन ने जो वैक्यूम तैयार किया है, उस वैक्यूम को भरने का प्रयास ये सीजेपी जैसे लोग कर रहे हैं।
0: ये एनालिसिस में पहली बार सुन रहा हूं।
1: बिल्कुल,
0: आप कह रहे हैं कि अपोजिशन वीक है इसके वजह से सीजेपी प्रोटेस्ट
1: कर रहा है। मैं बिल्कुल बता रहा हूं, एक डिजाइन है और ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट इस विचारों का डिजाइन है कि जिसमें ये जो बिल्कुल अराजकतावादी ताकतें जो होती है एनार्किस्ट, ये एनार्किस्ट फोर्सेस ये अलग अलग प्रकार से रीग्रुप होते हैं अलग अलग प्रकार से, और उसका एक आविष्कार ये सीजेपी के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। देखिए, ये सारे लोग जो है ये आइडियोलॉजी की लड़ाई हार चुके हैं। अब ये जानते हैं कि इनके आइडियोलॉजी पे लोग साथ में नहीं आने वाले, अब ये इश्यूज की लड़ाई पर आए, और इश्यूज की लड़ाई ये कभी भी कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी में आप लड़ ही सकते हैं, क्योंकि कभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में ग्लास पूरा भरा नहीं होता है। तो सरकार आधा भरा हुआ ग्लास दिखाती है और इश्यूज के ऊपर आप आधा खाली ग्लास दिखा सकते हो, इस प्रकार की लड़ाई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि इनका डिजाइन देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सीजेपी हो, ये सारे के सारे लोग संविधान दिखा दिखा कर ये सारे प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट क्या है, तो संविधान ने तैयार की हुई सारी संस्थाएं ये खराब है, आरबीआई भी खराब है, इलेक्शन कमीशन भी खराब है, सुप्रीम कोर्ट भी खराब है, सीएजी भी खराब है, ये सारी संस्थाएं खराब है। अब देखिए, ये डिजाइन ये है कि धीरे धीरे इन सारी संस्थाओं को डिमोनाइज करना, इनको डिमोनाइज करने के बाद ये बोलना कि देखिए संविधान ने तैयार की हुई संस्थाएं आपको न्याय नहीं दे सकती, और फिर धीरे धीरे ये लोग इस बात को प्रतिपादित करेंगे कि ये संविधान आपको न्याय नहीं दे सकता। संविधान दिखा दिखा कर ही संविधान के खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है, ये लोग एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट व्यवस्था को लाना चाहते, एक ऐसी व्यवस्था की जो, और ये मैं नहीं कहता, आप देखिए जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में जो एनआरकी की बात की थी, अगर आप उसको पढ़ेंगे बिल्कुल सेम उसी डिजाइन से काम चल रहा है, उसी डिजाइन से, मतलब कोई भी लॉजिकल बात नहीं कहना, और किसी ने लॉजिकल बात कही तो उसको एक प्रकार से ट्रोल कर देना, ये बिल्कुल इनका एक डिजाइन है कि जिस डिजाइन के तहत इस देश में एनआरकी लाकर एनार्किस्ट फोर्सेस यहां पर अल्ट्रा लेफ्टिस्ट व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, और अब इसमें सीजेपी और कांग्रेस में होड़ लगी है,
0: देयर इज अ कंपटीशन
1: कंपटीशन।
0: लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि पिछली बार जब सीजेपी का प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ था, द गवर्नमेंट एंगेज्ड विद देम, द गवर्नमेंट ने वहां पर दो बड़े सीनियर मंत्री वहां पर भेजे, उनके साथ में बात की। अगर वो एनार्किस्ट फोर्सेस है तो उनके साथ में सरकार ने बातचीत क्यों शुरू की, नंबर एक। नंबर दो, आप कह रहे हैं कि उनकी डिमांड है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन क्या पेपर लीक की वजह से जो जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी इस्तीफे की मांग करना, आपने भी तो कई बार आंदोलन किया होगा, महाराष्ट्र में मैंने आपको कई बार मंत्रियों का इस्तीफा मांगते हुए आंदोलन करते हुए देखा हुआ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आंदोलन करते हुए देखा हुआ है, तो पेपर लीक को लेकर मंत्री का इस्तीफा मांगना ये लॉजिकल कैसे नहीं है, किस तरीके से आप उसको रखें?
1: देखिए पहली बात तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो एंगेज किया ऐसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल करना ही चाहिए, अगर आप डेमोक्रेसी को मानते तो आपको सबके साथ बातचीत करनी पड़ती है। हम लोगों ने तो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो नक्सलवादी थे उनके साथ भी बातचीत की ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में करनी पड़ती है आपको, डेमोक्रेसी में बातचीत से ही हल निकलता है और हल निकालने का प्रयास करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजी हमको मंजूर है, या वो जो करते हैं वो मंजूर है, या जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को मार दिया ये हमको ठीक था इसलिए हमने उनसे बात की, ऐसा नहीं होता है। फिर भी प्रयास ये करना पड़ता है कि आप एंगेज विद द पीपल, Try to persuade them, try to convince them, और नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान ने आपको जिस प्रकार से जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आप देखिए नीट का पेपर लीक हुआ, गलत हुआ, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। उसके बाद गवर्नमेंट ने नीट की परीक्षा ली, ट्रांसपेरेंट परीक्षा हुई, परीक्षा का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद आप जंतर मंतर पे जमा होते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमा हुई है, आपको इस्तीफा मांगने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन वहां पर हो रहा था, जिस प्रकार की भद्दी गालियां प्रधानमंत्री जी के निकाली जा रही थी, और जिस प्रकार के वहां पर वाकयात थे, अब तो सामने आ रहा है 2000 तो ऐसे लोग थे वहां पर जो हिस्ट्री शीटर्स है, जिनके खिलाफ बहुत जघन्य इस प्रकार के अपराध है, तो ये जो सारा, देखिए इसको अराजकता कहते हैं, दिस इज एनार्की, इस्तीफा मांगना इज नॉट एनार्की, आप उपोषण करें ये एनार्की नहीं है, लेकिन इस प्रकार के लोगों को जमा करके और जिस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा था, जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार हो रहा था, ये एनार्की।
0: लेकिन फिर भी जो आंदोलनकारी, उन्होंने तो आपकी तारीफ की, मतलब जितना मैंने सुना है उसमें तो हमने देखा कि वो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, उन्होंने हम पर लाठीचार्ज नहीं किया, उन्होंने हमें आंदोलन करने दिया, जबकि दिल्ली में हमने देखा कि उसको लेकर काफी गुस्सा था कि लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी रही, आप मतलब आपका नजरिया थोड़ा अलग है उसको लेकर, या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से दिल्ली का आंदोलन हैंडल किया जा सकता था?
1: ऐसा है कि अगर मेरी आपके मालिक को गाली देने की इच्छा है तो मैं कहूंगा साहिल अच्छा आदमी है, मालिक खराब है, प्रॉब्लम मालिक का है, साहिल बहुत बढ़िया आदमी है, साहिल जैसा आदमी नहीं है, ये बहुत कॉमन है, इससे साहिल ने खुश नहीं होना चाहिए, साहिल को समझना नहीं होना ही नहीं चाहिए, साहिल को ये समझना, अगर साहिल को ये समझा नहीं कि भाई ये किस लिए बोल रहे हैं कि साहिल बहुत अच्छा आदमी है, तो फिर तो मतलब सॉरी टू से, पर इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो नहीं सकती ना साहिल।
0: चलिए ठीक है आप, लेकिन मैं ये तो पूछ सकता हूं ना कि जो दिखता है वो तो हम पूछ ही सकते हैं ना, कि ये बात भी तो सही है कि आपकी पुलिस ने बड़ी समझदारी से इस पूरे आंदोलन को हैंडल किया, देयर वाज नॉट अ सिंगल केस ऑफ लाठी चार्ज, देयर वाज नॉट अ सिंगल केस ऑफ फायरिंग, मतलब जो टीयर गैस छोड़ा जाता है. देर इज नो नॉट अ सिंगल केस ऑफ दैट. कोई ब्रुटैलिटी की खबर नहीं आई. इनफैक्ट महाराष्ट्र वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सबसे पहले केसेस वापस लेने में भी महाराष्ट्र था. कोई भी ऐसी धाराएं FIR में नहीं लगाई गई जिसके वजह से आप उनको क्रिमिनलाइज करें या स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े. ये भी तो रियलिटी है. इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो तारीफ हो रही है.
1: देखिए
0: अब इसमें आप वो तारीफ नहीं लेना चाहते, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता.
1: देखिए अगर वो सही मन से तारीफ करते ना तो मैं खुशी खुशी तारीफ ले भी लेता, उनको थैंक यू भी बोल देता. पर उस तारीफ के पीछे का डिजाइन मुझे मालूम है.
0: देयर इज अ ट्रैप.
1: इसलिए ऐसी तारीफ ठीक है. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नॉर्मली महाराष्ट्र में हमेशा हमारी ये पॉलिसी रही है कि जहां तक हो सके एंगेज करिए, और जब तक कानून व्यवस्था का एक्सट्रीम प्रयास मतलब को एक्सट्रीम हानि जब तक नहीं पहुंचती है तब तक हम बल का प्रयोग नहीं करते. लेकिन कभी कभी ये होता है, आप देखिए जैसे दिल्ली में हुआ कि अगर ये लोग संसद चले जाते, सवाल वो नहीं होता है, कुछ लोग संसद चले जाएंगे तोड़फोड़ करेंगे, इससे देश की बदनामी होती है, इससे पुलिस फोर्स की बदनामी होती है, और दुनिया में यह संदेशा जाता है कि ये देखिए कितनी वीक डेमोक्रेसी है, ये कितनी वीक कंट्री है कि जिसके संसद में लोग घुस जाते हैं और संसद के अंदर एक प्रकार से तोड़फोड़ हो जाती है, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है. देश की अल्टीमेटली एक जो हमारा डिटेरेंट होता है दुनिया में, एक मजबूत देश, ये उसके लिए इसकी हानि होती है. ये तो इसीलिए कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि जब कोई मानने को तैयार नहीं होता, लोग कानून हाथ में ले लेते हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को तोड़ देते हैं, तो बल का प्रयोग तो करना पड़ता है. पर बल का प्रयोग अंतिम होना चाहिए, और महाराष्ट्र में हम लोग बहुत संयम के साथ प्रयास ये करते हैं कि बल का प्रयोग कम से कम करना पड़े.
0: लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का भी एक काम होता है कि वो एंगेज करे, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ में एंगेज करे, जो महाराष्ट्र में हमने कई बार देखा हुआ है. क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भी अगर उसी तरीके का एंगेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ में या प्रोटेस्टर्स के साथ में होता तो हो सकता है कि जिस तरीके से उस प्रोटेस्ट ने बाद में रूप लिया उस तरीके से शायद चीजें नहीं होती?
1: देखिए एंगेज करे किसके साथ, ऐसा है
0: देयर इज नो बॉडी,
1: देयर इज एक प्रकार से वो फेसलेस था, और जो उसको चला रहे थे उनके भी कंट्रोल में लोग कहां थे, उनके भी कंट्रोल में लोग नहीं थे. तो कई बार ये ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाता है कि जिसमें कोई लीडर नहीं है, जो लीडर क्लेम कर रहे हैं अपने आप को वो भी लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. वो बन गए लीडर लेकिन लोग उनके लीडरशिप के लिए नहीं आए, कोई किसी और कॉज के लिए आए, कोई किस, जैसे आपने देखा जंतर मंतर पे जिनके इंटरव्यूज लोग ले रहे थे तो कई लोग तो ऐसा था जिनसे नीट से भी लेन देन नहीं था, किसी चीज से लेन देन नहीं था, कोई अलग अलग अपने कॉज के लिए आए थे, कुछ लोग रील बनाने के लिए आए थे, कुछ लोग पॉडकास्ट करने के लिए आए थे. तो मुझे यह लगता है कि एंगेज करने के लिए भी आपको लोग चाहिए किसके साथ. अब जब ये सारा वहां का माहौल हुआ, वहां लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद ये जो सारे एलिमेंट है जो अलग अलग प्रकार के ये चले गए, तब जो बचे हुए लोग हैं उनके साथ गवर्नमेंट ने एंगेज किया और एंगेज करके उसमें से हल निकाला.
0: नहीं लेकिन व्हाट इज द बिगेस्ट टेक अवे ऑफ दिस, बिकॉज मैंने चेंज ये जो नोटिस किया आप केस में कि आपने समय रैना से मुलाकात की, आपने एक मीटिंग बुलाई थी मुंबई पुलिस और जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है जिनके खिलाफ एक वक्त पे मुंबई पुलिस ने ही FIR दर्ज किए थे फॉर यूजिंग ऑब्सीन लैंग्वेजेस जो भी उनके सेक्शन थे उसमें. You tried to engage with them. क्या आपको लगता है कि ये engagement की कमी हो रही है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में, कि उनकी जो ये Gen Z generation है उनके साथ में उनके लैंग्वेज में engagement शायद नहीं हो पा रहा है जो आपको लगता है कि जरूरी है, उनके साथ बातचीत जरूरी है, उनका तजुर्बा अलग है, उनका सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग है, उनके साथ में ये जरूरी है ऐसा आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि engagement बहुत जरूरी है, कम हो रहा है ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ ये जरूर है कि अल्टीमेटली मैं आपको एक ही उदाहरण बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको याद होगा एक इंस्टा पोस्ट डाला, एक इंस्टा पोस्ट, और उसने सारे अल्गोरिदम तोड़ दिए.
0: आप इंस्टा पे हैं?
1: हाँ
0: आप रील्स डालते हैं?
1: हाँ मैं डालता हूँ, मैं सारे प्लेटफॉर्म पर हूँ, ऑल प्लेटफॉर्म्स.
0: यू ऑल्सो डू द वीडियोज एंड ऑल?
1: या आई डू, मैं करता हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये होता है, आपको रियलाइज होता है कि भाई एक नई जनरेशन है, इस नई जनरेशन के साथ उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, उनको हमको समझना पड़ेगा और उनको एंगेज करना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं, हम करेंगे, कोई सवाल नहीं है। और देखिए, जो लोग जंतर मंतर पे थे केवल वो जेंजी है ऐसा हम समझेंगे तो ये गलत बात है। देखिए, ये जो बहुत बड़ी जनरेशन है, इस जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कई लोगों के साथ हम लगातार एंगेज करते हैं, कई कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ, उनके साथ एंगेज करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ, देखिए ये पहली जनरेशन है कि जो 100% टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई है। मिलेनियल्स भी पूरे टेक्नोलॉजी के साथ पैदा नहीं हुए, वो एक प्रकार से मतलब उस बीच के इसमें पैदा हुए हैं। लेकिन जेन जी एक ऐसी जनरेशन है कि जो 100% टेक्नोलॉजी के साथ, स्मार्टफोन्स के साथ ये पैदा हुई है, इसलिए इसका एक्सपोजर अलग है। किसी भी इसके पहले की जनरेशन से इनका ग्लोबल एक्सपोजर अलग है, इनको जो चीज़ें परोसी जाती है वो चीज़ें भी अलग है, मतलब उसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें, कुछ बुरी भी चीज़ें। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इनकी विचार की जो प्रक्रिया है, क्षमता है, ये थोड़ी अलग है, तो उस हिसाब से एंगेज करना पड़ेगा। मुझे लगता है हम कर रहे करेंगे
0: नहीं, क्योंकि कारण इसका ये हुआ ना कि ये इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं है। आप एक आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद एक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इज इनविंसिबल, बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इस तरीके से लग रहा था। और अचानक देश में माहौल बदल गया, अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट होने लग गए, सवाल खड़े होने लग गए, SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया, न्यूज़पेपर के रिपोर्ट में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके पर सवाल उठे, ये सारी चीजें देखते हुए आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, क्योंकि 2029 में हम चुनाव का सामना करेंगे, पार्टी को भी अपने आप में कुछ बदल करना पड़ेगा? आप 230 विधायकों के साथ इस स्टेट में राज कर रहे हैं, अगर आपके अलायंस के पूरे विधायक देखे तो, लेकिन आज फिर भी अपोजिशन आपको सड़क पे नजर आ रहा है एक तरीके से, अलग अलग फॉर्म में, कोई रवैया चेंज करना पड़ेगा पार्टी को?
1: देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो लग रहा है कि भाई बहुत माहौल बदल रहा है वगैरह, इसमें कोई मैं नहीं मानता कि तथ्य है, क्योंकि जैसे आज ही त्रिपुरा के चुनाव का रिजल्ट आया, त्रिपुरा के लोकल बॉडी इलेक्शंस EVM पर नहीं हुए, बैलेट पर हुए, और बैलेट के चुनाव में बीजेपी ने आज ही त्रिपुरा में पूरा स्वीप किया है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपको ये लोग जो दिख रहे हैं, जो लोग मुखरता के साथ बोल रहे हैं, इसको अगर आप पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन समझेंगे तब गलती करेंगे। देश में बड़ा मास ऐसा है जो बोलता नहीं है, जो कुछ ना कुछ कर रहा है, और जो बीजेपी के साथ है, और वही बीजेपी की ताकत है, और हम उसके साथ एंगेज कर रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी पार्टी स्टैटिक नहीं हो सकती है, आपको अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। और इसमें तो सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी हमें हमेशा ये कहते हैं कि आपको पिछला चुनाव जिन तरीकों ने जीता कर दिया, वो तरीके अगले चुनाव में काम नहीं आते, आपको संवाद के माध्यम बदलने पड़ते हैं, आपको विषय बदलने पड़ते हैं, आपको नए तरीके से रीच आउट होना पड़ता है। ये हमेशा प्रधानमंत्री जी का कहना होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत डायनामिक होती है, जनरेशंस बदलती है, उनके साथ आपको एंगेज करना पड़ता है, तो आपके तरीकों को भी बदलना पड़ता है। जैसे आज अगर हम विचार करें तो पिछले समझ लीजिए कि 2024 का चुनाव, 24 के चुनाव में सबसे बड़ा मतलब जो कम्युनिकेशन हुआ जो भी, ये YouTube था और यूट्यूबर से, कि जिन्होंने नरेटिव को मेक ब्रेक शेप किया,
0: जो मेनस्ट्रीम में नहीं,
1: हाँ मेनस्ट्रीम में जो, लेकिन आज अगर आप देखें तो आज 40% ट्रैफिक इंस्टाग्राम पर है। अब लोग लंबी चीजें देखना नहीं चाहते, अब यू हैव टू कम्युनिकेट इन 45 सेकेंड्स, आपको एक मिनट में कम्युनिकेट करना है, क्योंकि सारा कंजम्पशन अब अगर इंस्टाग्राम पे आ रहा है और आप एक्स पोस्ट करते रहेंगे, आप फेसबुक पे, मतलब वो भी अच्छे माध्यम है, 15% 20% उनका भी शेयर है, बट इफ यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम, यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, If you are not communicating on Instagram, you are not communicating with the new generation. इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा उस समय के माध्यम क्या है ये हमको समझना पड़ता है और उसके हिसाब से अपने आपको बदलना भी पड़ता है।
0: आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे नेताओं को कि लंबे भाषण मत दीजिएगा। अभी शॉर्ट्स का जमाना आ गया, छोटे छोटे में आपको जो बोलना है वो छोटे में बोलिए, लंबे लंबे भाषण नहीं चलेंगे।
1: कम्युनिकेशन अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है और जो कम्युनिकेटर जो होता है ना, कम शब्दों में राइट बात जो बता पाए वो कम्युनिकेटर होता है और किसी भी नेता के लिए कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है।
0: एक और एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि मैंने शुरुआत उससे की थी इसी के लिए कि आपका थर्ड टर्म चल रहा है, यानी बीच का टर्म तो भूल जाते हैं हम, लेकिन ठीक है दो टर्म आपके हो चुके हैं। नॉर्मली तीसरे टर्म की तरफ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री जाता है बीजेपी में तो रास्ता उसका थोड़ा सा ट्रैजेक्टरी रास्ता थोड़ा बदल जाता है। हमने सुना है कि कई लोग यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं कि जो इच्छा रखते हैं, आप अच्छे मन से कहिए कुछ अलग मन से कहिए, कि उनको लगता है कि आप ऊपर जाएं, दिल्ली की तरफ आप चले जाएं, और फिर हम खबर सुनते हैं कि हरदीप पुरी उनका टिकट काट दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ये सब हो रहा है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, फलानी बातचीत चल रही है, तो फिर आपका नाम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर आना शुरू हो जाता है। ये क्या है, मतलब आप एक्चुअली क्या है, मतलब आप कई बार क्लैरिफाई कर चुके हैं लेकिन बातें ऐसी नहीं होती है।
1: देखिए
0: मैं तो धुआं है, तो आग है तो धुआं है,
1: आग रहती है धुआं रहता है, पॉलिटिक्स में सब चलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा रास्ता अभी बहुत साफ है। मेरा रास्ता गढ़चिरौली से शुरू होता है और गढ़ हिंगलस तक जाता है, ये रास्ता बिल्कुल पक्का है, इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरा रास्ता, मैं दिल्ली ये प्रवासी के रूप में जाता हूँ, निवासी के रूप में नहीं, और मैं वैसे ही रहूँगा। मेरी पार्टी ये चाहती है कि मैं महाराष्ट्र में काम करूँ, मेरे नेता ये चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र में काम करूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं महाराष्ट्र में ही काम करने वाला।
0: नहीं ऐसा क्यों, लेकिन अगर दिल्ली में जाने में बुराई क्या है?
1: नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है।
0: बुराई क्या है, मतलब अगर कोई
1: भाई
0: बुराई, प्रधानमंत्री भी तो दिल्ली गए।
1: ना, बुराई नहीं है, पर जबरदस्ती क्यों भेजना चाहते हो? समय आएगा तो वहां भी जाएंगे, ये तो बड़े अजीब जबरदस्ती है। नहीं अभी जाओ, आज जाओ, कल जाओ, अभी आपका टिकट बुक कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हर चीज का अपना समय होता है, अभी मेरा समय महाराष्ट्र में चल रहा है, बहुत चीजें कर रहा हूं, बहुत चीजें करनी है। मेरी पार्टी की बहुत अपेक्षा है मेरे से है, मेरे नेताओं की बहुत अपेक्षा है, उनको पूरा करूंगा। उसके बाद जब नेता कहेंगे दिल्ली आ जाओ तो दिल्ली आऊंगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ दिल्ली बुलाएंगे दिल्ली जाऊंगा, और कह दिया नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं नागपुर चले जाओ तो नागपुर अपने घर धर्मपेट।
0: सो देयर इज नो कंपल्शन कि आपको दिल्ली जाना ही है, आपने एक ट्रैजेक्टरी बना के रखी है कि आपने आप
1: बिल्कुल कोई
0: आगे
1: कोई
0: हम उस तरफ जाएंगे,
1: कोई कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी।
0: और ये कंपटीशन दिखाई देता है कि आप प्रधानमंत्री को मिलने जाते हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री को मिलते हैं, आप गृहमंत्री के पास जाके एसोसिएशन की मांग करते हैं कि भाई हमें पैसे ड्राउट के लिए पैसे दीजिए। उस दिन हमने देखा एकनाथ शिंदे उनके तरफ से भी आए कि हमने प्रधानमंत्री से मांग की। ये कॉम्पिटिशन चल रहा है डेप्यूटी सीएम, सीएम, फॉर्मर डेप्यूटी सीएम, नाउ सीएम, वैसा
1: नहीं। मेरा अपना मानना यह है कि आप एकनाथ शिंदे जी को महज डिप्टी सीएम के रूप में देखते हैं, वो केवल डिप्टी सीएम नहीं है, हमारी जो एक साथी पार्टी है, कोएलिशन पार्टनर है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और ये एक ऐसा कोएलिशन पार्टनर है कि जो हमारे पहले तीन कोएलिशन पार्टनर में आता है। इसलिए भले ही यहां पर वो डिप्यूटी सीएम के रूप में हो, पर देश की राजनीति में हमारे कोएलिशन पार्टनर के रूप में वो होते, इसलिए प्रधानमंत्री जी से भी उनको मिलना पड़ता है, एनडीए की बैठकों में भी उनको जाना पड़ता है, और प्रधानमंत्री से वो मिलते हैं, और अगर वो प्रधानमंत्री जी के पास इस एक्सट्रीम ड्राउट की सिचुएशन में जाएंगे
0: तो वो शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर जाते
1: हैं, शिवसेना के अध्यक्ष तौर पर वो मिलते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की भी कोई चीज है तो मुझसे बात करके ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बिना बताए वो जाते हैं।
0: पर आप पूरे कंट्रोल में है, मतलब कोई ऐसे इंटरनल कॉम्पिटिशन की?
1: एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल पूरा मेरा है, मैं व्यक्तियों को कंट्रोल नहीं करता, इसलिए व्यक्तियों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं करता भी नहीं हूं, पर एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा मेरा कंट्रोल।
0: बट एज अ चीफ मिनिस्टर मंत्रियों पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए, उसमें क्या है? मतलब अगर चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मंत्रियों को भी कंट्रोल करना है?
1: ना, मंत्रियों को कंट्रोल करना है ना एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल, व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल था ही सभी को मालूम है क्या है।
0: चलिए हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते मुझे आपसे एक पूछना है, क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद एक्चुअली आपका ट्विटर बायो देखा और उसमें आपने लिखा है कि राम सेवक, कार सेवक एंड महाराष्ट्र सेवक, अपने आप को आप डिस्क्राइब करते हैं?
1: इसका मतलब आपने तीन चार सालों से देखा नहीं है?
0: हाँ, मैंने बहुत दिन से
1: तीन चार सालों से ये
0: आज मैंने अचानक देखा कि
1: तीन चार सालों से यही है
0: ये टर्म। ये आपका ये कैसा है, मतलब उसका लिंक कैसे होगा, मतलब पहले राम सेवक, कार सेवक और फिर महाराज सेवक, या सब एक साथ कैसे देखे हम?
1: देखिए, आप कैसा भी कह लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी ऐसा पिया ऐसा पिया ऐसा पिया ऊपर से पिया, वो एक ही बात है। मैं महाराज सेवक हूं ही, मैं राम सेवक हुई और मैं कार सेवक हूं ही।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस एज यूजुअल।